नमस्कार, हम विवेक भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है। शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की दशमी तिथि, तदनुसार दिनांक 1 जुलाई 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं। सुस्वागतम।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के

0: सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। यह फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
2: ये है विविध भारती।
1: वंदन वार।

साथियों सुनिए आज का चिंतन। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। ये था आज का चिंतन। और अब सुनिए वंदन वार में भक्ति रचनाएं।

0: इसी देशगान के साथ ये कार्यक्रम वंदनवार अब यहीं संपन्न हुआ।
1: ये है विविध भारती।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, इसका भाग 236 प्रसारित किया जाएगा। सुबह 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका का भाग एक, कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह है, संपादन सहायक झरना सोलंकी और प्रस्तुति अनुश्री पाठक, कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। सुबह 7 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम त्रिवेणी आप सुनते हैं सुबह 8:15 पर और पुनः दोपहर 2:00। आज त्रिवेणी में आलेख एवं स्वर है ममता सिंह का। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर और शाम को 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा संगीतकार सी अर्जुन पर, आलेख एवं स्वर अशोक सोनावले का है। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे, गीतकार शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का भाग दो आज प्रसारित होगा, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबीर खान। रंग तरंग कार्यक्रम सुबह 11:00 12:05 पर यादों की महफिल और 1:00 सुनिएगा सुरीला सफर। सदाबहार नग में ये कार्यक्रम आप सुनते हैं दोपहर बाद 2:30 पर। 3:00 सुनिएगा सखी सहेली के अंतर्गत कुछ इन विषयों पर बातचीत, पारिवारिक चिकित्सक साड़ियों का संसार, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे टसर या घीचा सिल्क साड़ी झारखंड की मशहूर, शब्द हमारे और आपके में सुनिएगा प्रतियोगिता के बारे में और व्यंजन पकौड़े के बारे में बातचीत होगी, संवादक मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में आप सुनेंगे वरिष्ठ साहित्यकार हरिशंकर राठी से मंदाकिनी जोशी।

खुशी की बातचीत का भाग एक। छाया गीत शाम 5 बजे 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:30 पर आप फिर से सुनेंगी झरोखा और 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुनते हैं शाम 7 बजे। 7:45 पर आज इंद्रधनुष में राग अनुराग। 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका के अंतर्गत झलकी दीवा स्वप्न। मनु भाई देसाई का लेखन है, निर्देशक सत्येंद्र शरत। कार्यक्रम आपके लिए रात 9 बजे। 10 बजे छाया गीत आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये थी रूपरेखा हमारे आज के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का अंक 236 आप सुनेंगे।

भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपनी उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्री राम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं, और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्री राम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों, ऐसी सीख की याचना भी करते हैं।

0: नमस्कार श्रोताओ, भारतीय संगीत परंपरा में यदि किसी वाद्य को प्रकृति की सहजता, मानवीय संवेदनाओं कोमलता और आत्मा की गहनतम अभिव्यक्ति का प्रतीक माना गया है तो वो है बांसुरी। बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना की अनंत धारा का मधुर स्वर है, श्वास का संगीत है। ये प्रकृति की निस्तब्धता को भी मधुर अभिव्यक्ति दे देती है। इसकी ध्वनि में कभी यमुना के तट पर नाचती कृष्ण की दिव्य लीला का आह्वान सुनाई देता है तो कभी वन उपवनों में बहती समीर की मृदुल सरगम। बांसुरी की तान मानव हृदय के उन भावों की अभिव्यक्ति देती है जिन्हें शब्दों में बांध पाना संभव नहीं होता। इसकी ध्वनि में मिट्टी की सोंधी सुगंध और जनमानस की सरल भावनाएं समाहित रहती हैं। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से आरंभ हो रही है एक नई श्रृंखला। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं, अपनी विलक्षण साधना और अद्भुत प्रस्तुति शैली के माध्यम से बांसुरी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं मम सिंह। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। बांसुरी की तान जब छिड़ती है तो हम जैसे सुर सरिता में अवगाहन करते हैं, मन दीन दुनिया से पर होकर साधना में लीन हो जाता है। पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार, जिनका पूरा नाम रणेन्द्र भानु मजुमदार है, आप भारतीय संगीत जगत के ऐसे अनुपम साधक हैं जिन्होंने अपनी बांसुरी की मधुर तान से शास्त्रीय, लोक और फिल्म संगीत तीनों धाराओं को अद्भुत सौंदर्य प्रदान किया है। उनकी बांसुरी से निकलने स्वर मानव प्रकृति की शांत सरिता की तरह हृदय को स्पर्श करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की गंभीरता और आध्यात्मिकता को उन्होंने अपनी कला के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने बांसुरी की

0: दुनिया में कई नए प्रयोग किए, एक नई दिशा दी। फिल्म संगीत में भी पंडित रोनू मजूमदार ने बांसुरी को केवल एक वाद्य यंत्र नहीं रहने दिया, बल्कि उसे भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बना दिया। उनकी धुनों में कहीं प्रेम की कोमलता है तो कहीं लोक जीवन की मिट्टी की सोंधी सुगंध। लोक संगीत में उनकी बांसुरी भारतीय संस्कृति और परंपरा की आत्मा को जीवंत कर देती है। फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इस श्रृंखला की सुरीली कड़ियां पिरोने के लिए हमने आमंत्रित किया है पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार जी को, जो आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। पंडित जी को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, कुमार गंधर्व पुरस्कार के अलावा अन्य बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्होंने अपनी साधना और प्रतिभा से ये सिद्ध किया है कि बांसुरी केवल संगीत का साधन नहीं, बल्कि आत्मा और संवेदना की मधुर अभिव्यक्ति है। पंडित जी के साथ तबले पर हैं अजीत पाठक जी, जो आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं, और बांसुरी संगत के लिए हमने आमंत्रित किया है कल्पेश साचला जी को। तो हम शुरू करते हैं श्रृंखला, और हम स्वागत कर रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार जी का। पंडित जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, आज बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे कि मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ। कुछ बातचीत, कुछ संगीत की चर्चा तो होगी ही
0: जी। और अब हम अजीत जी का स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। अजीत जी, स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: और अब बांसुरी संगत के लिए हमने आमंत्रित किया है कल्पेश साचला जी को। कल्पेश जी, नमस्कार, स्वागत।
2: जी नमस्कार।
0: तो अब हम शुरू करते हैं। रोनूदा, आप ये बताइए कि आज इस श्रृंखला की पहली कड़ी में बांसुरी का खजाना खोलेंगे, तो सबसे पहले खजाने से कौन से मोती निकालेंगे? हमें तो आपकी ही बांसुरी का वो गाना याद आ रहा है, खाली हाथ शाम आई है, इजाजत फिल्म का गाना, जिस पर आपकी बड़ी सुरीली तान सुनाई पड़ती है, आप क्या कहेंगे?
1: ये एक ऐसा गाना पंचमदा आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किया था। उसके पहले भी मैंने आशा जी के साथ बहुत गाने बजाए, मगर इस गाने ने मेरी उनसे दोस्ती करवा दी।
0: जी जी,
1: मतलब वो मेरी माँ भी थी और दोस्त भी थी। मन की बातें मुझसे साझा करती थी, सुख दुख की हर बातें मेरे साथ करती थी
0: जी।
1: और जैसे ही मैंने बजाया, वो सिंगर बूथ, उस जमाने में तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो आज की तरह नहीं कि वो जमाना अलग था। वो फिल्म सेंटर का बहुत बड़ा एक हॉल, कोई जैसे कि मैरिज का हॉल हो, इतने बड़े हॉल में 150 म्यूजिशियन बजा रहे हैं, ऐसा माहौल था
0: जी।
1: तो सिंगर बूथ से निकली और सबसे पहले मेरे पास आई, तो पहले वो उन्होंने पूछा, कह रहे तुम क्लासिकल आर्टिस्ट हो क्या? मैंने बोला हाँ। तो अपने गुरुओं का नाम मैंने बताया, बोली कि सबसे बड़ी बात जो मुझे ये लगी कि जैसे मैं मुखड़ा गा रही थी, जितनी वैरायटी विविधता मैं कर रही थी, उससे अलग हटके तुमने कैसे सोचा? मैंने तो सारी वैरायटी, मुझे लगा कि मैंने गा दिया। मैंने भी जो एक भाव शुरू से वैसा ही था
0: जी जी,
1: एक फक्कड़पना शुरू से था, मैंने कहा दीदी ये तो सागर है, इसका था कहाँ से मिलेगा, ये तो जितना डूबेंगे उतना और गहराई मिलेगा। बोली बहुत अच्छा, तुम घर आओ। तो उसके बाद प्रभु कुंज में जाने लगा मैं
0: जी।
1: ये लोग सारी बहने तब प्रभु कुंज पेटर रोड में रहते थे
0: जी, बिल्कुल
1: जी। लता जी को भी मालूम था कि मैं आशा जी से बहुत क्लोज हूँ, तो जैसे ही मैं जाता था तो बोलती थी तू आशा से मिलने आया है ना। तो एक अजीब सा, तो मैं आपको एक मुखड़ा और अंतरा खाली हाथ शाम आई का बजा के सुना रहा हूँ
0: जी जी।

0: वाह पंडित जी, आपने तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया। और सचमुच जब फिल्मी गाना सुनते हैं खाली हाथ शाम आई तो भी हम यहाँ स्टूडियो में सुनकर सचमुच अभिभूत हो गए। तो अब बताइए, अब क्या आप सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: 1990 आते आते क्लासिकल सोलोइस्ट तो मैं पहले से ही था, ये नहीं कि फिल्म में मैं पहले बजाया और फिर क्लासिकल। क्लासिकल तो मैं 6 साल की उम्र से बजा रहा हूँ।
0: जी जी।
1: मगर नाम नहीं हुआ था मेरा, पहचान नहीं बनी थी, तो 1990 से ना मेरी पहचान होने लगी
0: जी।
1: तो कई बार मैं रिकॉर्डिंग मिस कर जाता था तो पंचम दास से बोलती थी कि अरे वो रोनू नहीं है, फिर कैसे चलेगा?
0: क्या बात है।
1: क्या, कौन बजाएगा ऐसे
0: जी?
1: तो एक एल्बम कहते हैं ना कि जब तक इंसान सामने रहता है तो उसकी कीमत मालूम नहीं पड़ती है। जब पंचम दास चले गए तो लोगों को मालूम पड़ा कि दिल पड़ोसी है
0: जी
1: क्या एल्बम था
0: जी।
1: उसमें एक गाना था गुलजार साहब का लिखा हुआ, सातों बार बोले बंसी एक ही बार बोले ना।
0: वाह, तो ये आप बजा के सुनाएंगे?
1: मैं आपको बजा के सुना रहा हूँ
0: जी।
1: तो उस गाने की खास बात ये थी कि मैं था अमेरिका में और उन्होंने और भी बांसुरी वादक थे जिससे बजवा सकते थे, वो लोग दिए थे, वो तो सभी अच्छे हैं, बुरा तो कोई है नहीं,
0: बिल्कुल
1: सभी अपने हिसाब से अच्छा ही बजाना चाहते हैं। मगर मेरे लिए इंतजार किया।
0: क्या बात है,
1: ये गाना तो अमेरिका से आ जाएगा तो ही होगा रिकॉर्ड। और फिर वो आशा जी की मेरी जुगलबंदी हो गई
0: जी,
1: ऐसा नहीं लगा कि मैं संगतकार हूँ, मैं उसमें छोटा सा पीस बजा रहा हूँ, ऐसा नहीं लगता
0: जी।
1: तो मैं सातों बार मैं सुना रहा हूँ आपको
0: जी। स्वागत।

सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे थे श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आज आपने सुनी इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: वाह दादा, आपने तो फिर एक बार अभिभूत कर दिया। और बस दिल पड़ोसी एल्बम का ये जो सुरीली तान आपने छेड़ी, बहुत अद्भुत थी। तो अब आज की इस कड़ी को यहीं समेटते हैं, श्रोताओं को कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में स्वागत करती हूँ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारायणिया। आइए आपको सुनवाते हैं पहली तारीख फिल्म का ये गीत, क्योंकि आज है पहली तारीख जुलाई की। किशोर कुमार का गाया गीत, कमर जलालाबादी के बोल है, सुधीर फड़के का संगीत।
1: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, दिन है सुहाना।

जल्दी से आना, शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना बहाना बहाना, करो ना बहाना।

पैसा जरा लाना, ओ पैसा जरा लाना, लाना लाना, ओ पैसा जरा लाना आज पह

मेहमान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

0: जी फिर मजेदार है। आगा है भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी की बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: श्रोताओं, आज है संगीतकार सी अर्जुन का जन्मदिन, उन्हें याद करते हुए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम भूले पिछले गीत में। आगे के सारे गीत उन्हीं के संगीतबद्ध किए हुए सुनिए। ये गीत पुनर्मिलन फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वरों में गुलशन बावरा के बोल हैं, सी अर्जुन का संगीत।

आइए अब आपको सुनवाते हैं सुशीला फिल्म का गीत। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है, इंदीवर ने रचना की है और सी अर्जुन का संगीतबद्ध किया गीत है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं रक्षाबंधन फिल्म का गीत, जिसे गाया है उषा मंगेशकर और साथियों ने। प्रदीप का लिखा गीत है और तर्ज बनाई है सी अर्जुन ने।

0: क्रोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह

0: विद्या दृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का लिया निर्णय। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित हो रहे यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर सहित प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा।
2: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
1: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो रहा है। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक

0: वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रदेश के सभी जिलों में आज से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कल आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
2: वो लोक माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास करकर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वह आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
0: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आज से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहन के धारक स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। प्रदेश के सभी जिलों में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत करीब एक दर्जन सरकारी विभाग आपसी समन्वय बनाकर पूरे माह संचारी रोगों की रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। राज्य के लगभग सभी जिलों में मॉनसून की दस्तक हो गई है। मॉनसूनी वर्षा शुरू हो जाने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर सहित कई जिलों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।
3: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले दो दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
0: प्रदेश में टाइगर रिजर्व के लिए 1 नवंबर 2025 से जारी पर्यटन सत्र कल संपन्न हो गया। 8 महीने तक चले इस सत्र के दौरान लखीमपुर खीरी के दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों ने वन्य जीवों का अवलोकन किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का लिया निर्णय। UPTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष

0: अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: डी बर्मन का संगीत है।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हम है राही प्यार की इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म अंदाज से आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के लिखे बोल और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

जब हसीना प्यार में उसके धड़के में रात

राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर मजदूर सुल्तानपुरी के बोलो को आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना बुढ़ा मिल गया इस फिल्म से। कार्यक्रम हम है राही प्यार के है एक अंतराल का वक्त।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का हमें राही प्यार के कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कारवां फिल्म का गीत। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों में मर्जू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत आरजी बर्मन का।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने के।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर आनंद बख्शी के बोल। इस गीत को गाया है किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम है हाथी में।

और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जाने अनजाने फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। हसरत जयपुरी ने इस गीत की रचना की, शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपये, गोवा में 406 रूपये और केरल में 401 रूपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर

0: संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कम्प्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। यह भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को यूडायस, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।

0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
1: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय यूपी टीईटी की समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई।

श्रोताओं गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी विविध भारती सुनने वालों का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। मैं आज हूँ आपके साथ पूजा नरानिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म फिजा से। गुलजार के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत, उदित नारायण, अलका याग्निक और प्रशांत की आवाजें।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई 2026 से 7 जुलाई 2026 तक हम मना रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह। हर साल लाखों भारतीय एक साझा उद्देश्य के साथ एकजुट होते हैं और पेड़ लगाना, हरित भविष्य में योगदान देना, ये कार्य मिलकर करते हैं। वन महोत्सव के नाम से जाना जाने वाला यह राष्ट्रव्यापी अभियान, जिसे वन उत्सव या वृक्षों का त्योहार भी कहा जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण उत्सवों में से एक बन गया है। यह सिर्फ वृक्षारोपण अभियान से कहीं अधिक है, बल्कि यह जैव विविधता को बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, जल संरक्षण और आजीविका को सहारा देने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाता है, हम सबको जागरूक करता है। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला वन महोत्सव नागरिकों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और निगमों को वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाता है, जोड़ता है। वन महोत्सव एक अखिल भारतीय वृक्षारोपण उत्सव है जो हर साल जुलाई में मनाया जाता है। इस पहल को 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉ. के.एम. मुंशी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई थी। तभी से वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह समय भारत के कई हिस्सों में मानसून के मौसम की शुरुआत के साथ मेल खाता है। बारिश नए लगाए गए पौधों को जड़ जमाने और सफलतापूर्वक बढ़ने के लिए आदर्श परिस्थितियां जो प्रदान करती है। भारत की तेजी से बढ़ती शहरी आबादी, विस्तारित बुनियादी ढांचा और बदलते जलवायु पैटर्न के कारण पर्यावरण बहाली की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। हरियाली समग्र रूप से पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। दोस्तों, चूंकि वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए वनस्पति का संरक्षण करना और स्वस्थ प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है। आइए मिलकर हम ये वन उत्सव मनाते हैं। ला, ला, ला, ला, ला, ला, ला, ला,

ए.आर. रहमान के संगीत से सजा आनंद बख्शी के बोलों से सजा ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म का नाम ताल। और अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार केंद्रित रहेगा संगीतकार सी अर्जुन पर। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश, एक रिश्ता द बॉन्ड फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के ही स्वरों में ये गीत समीर के बोल हैं।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
3: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब आपको सुनवाते हैं अलबेला फिल्म का गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

0: सियासी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था। बिधान चंद्र रॉय की गिनती देश के महान चिकित्सकों में की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि विश्वभर में चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है। इसलिए हम भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर डॉक्टर को आज सलामी देते हैं और इस विशेष दिन यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे की उन सभी को सम्मान के साथ बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत दिल का रिश्ता। इस फिल्म से अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के स्वरों में समीर के बोल, नदीम श्रवण की बनाई धुन।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं परदेसी बाबू। इस फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। सुधाकर शर्मा ने इस गीत की रचना की है और तर्ज बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम जितलोक में अभय वक्त इच्छु

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अब आपको सुनवाते हैं समीर का लिखा ये गीत। अलका याग्निक अभिजीत की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है जुदाई।

अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश, अलका याग्निक का गाया गीत, समीर की रचना, हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म का नाम जूली।

जूली फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक से अब दीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूजा नरानिया को आज्ञा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुनते रहिए आगे के कार्यक्रम विविध भारती के संग।

0: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर कर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी मां।

1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

फिल्म पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

श्री अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है

0: ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध, आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: जाने माने गीतकार, वो कहते हैं खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क। और फिल्म थप्पड़। एक टुकड़ा अंदर अंदर जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
1: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
2: हाँ।
1: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
2: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
1: तो मुल्क के, तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
2: मुल्क का गाना आप वो सुनाएं, पिया समाए।
1: जी,
2: बहुत अच्छा गाना है,
1: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
2: हाँ,
1: कव्वाली है।
2: यस यस,
1: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना, और हम आपको बताएं कि विविध भारती
2: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने।
1: जी बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है
2: जी,
1: सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
2: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
1: जी,
2: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी।
1: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
2: जिक्र किया जाए,
1: दर्ज होती है आज के समय।
2: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है।
1: बिल्कुल।
2: और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
1: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
2: जी हाँ जी, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप
1: जी।
2: बिल्कुल।
1: तो
2: आर्टिकल 15 से,
1: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
2: उस गाने की कहानी ये है कि
1: कोई दिलचस्प बात हो।
2: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ।
1: हाँ।
2: आप यूँ समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
1: पड़ा है इजाजत फिल्म
2: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
1: अरे क्या बात है।
2: हाँ, उल्टा मतलब कि
1: सामान देना है।
2: हाँ, वो कह रहे लौटा दो।
1: हाँ।
2: और मुझे ऐसा चाहिए कि

0: हाँ,
1: ठीक है।
0: संचय करना है यहाँ
1: हाँ
0: पर।
1: हाँ तो उसमें जो गाना है वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मोमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है,
0: जी जी
1: मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मोमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूं।
0: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
1: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो, लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ। तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना, इंतजारी।
0: जी
1: हाँ,
0: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
1: हाँ, इसी इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी,
0: क्या बात है, वाह,
1: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी,
0: वाह
1: है
0: वाह,
1: ना,
0: बहुत सुंदर।
1: है ना।
0: तो
1: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुम्हारी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है,
0: रंगी है
1: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
0: बिल्कुल,
1: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना है
0: जी।
1: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट पिया समय, हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए।
0: तो
1: अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलियाबाद वगैरह में, और
0: ये भी गाना लिख दीजिए।
1: और हम जो हैं, मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक, वो और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और
1: मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे।
0: जी जी।
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसको कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो, हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए।
0: जी, जी, जी।
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा। मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, क्या सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए।
0: जी जी।
1: ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक साथ जुड़ने चाहिए। तो

0: अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है, है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
1: खुदा है,
0: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना वो
1: छुपाऊं कैसे,
0: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी,
1: बिल्कुल
0: है ना?
1: बिल्कुल, दो अर्थी,
0: तो हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगेंगे,
1: रंग दिखाई,
0: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
1: वाह क्या बात है,
0: सातों से मिलके
1: भई
0: मैं उजली,
1: वाह वाह,
0: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
1: क्या बात,
0: पिया समाये जिया में मोरे पिया समाये। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है, कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ,
1: जी जी,
0: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था, और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
1: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है, और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा एमएम करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना, इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं। क्योंकि
1: मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची,
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी, और ये गाना जो है एमएम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे पसंदीदा कंपोजर हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवां हो गया। जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जब ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर।
0: हाँ, जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी। मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई। उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी। सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
0: जी।
1: तो उसमें गाना था वो, के ने गाया था वो।

0: ऐ बे खबर, ऐ बे खबर,
1: जी जी जी
0: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था, जाने जा
1: जी जी
0: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ।
1: जी जी तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
0: आई बेखबर
1: सुनते हैं। हाँ। ये गाना

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में?
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों,
0: जी जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है, है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे।
0: जी जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था।
0: जी जी।
1: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नाम ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी जी,
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी,
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा, चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज है।
1: हाँ, और 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगा ने
0: जी,
1: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
0: जी जी।
1: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे, बहुत अच्छे गाने।
0: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था?
1: वो तेरा नाम था, बिल्कुल।
0: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं, लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
1: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
0: अच्छा,
1: तब मैं सूरत में रहता था
0: जी जी,
1: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
0: अच्छा,
1: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन, समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई, और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी, जुल्मी फिल्म थी, अक्षय कुमार
0: जी जी जी।
1: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई

0: यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना।
1: वहाँ तनवीर खान भी के राइटर्स
0: हैं। हाँ हाँ हाँ, तो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए। तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी और उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाम माँ के नाम था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओ क्या बात है।
0: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा, आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे। इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
1: ओह क्या बात है।
0: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे।
1: जी जी।
0: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
1: जी।
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
1: जी।
0: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से, रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊंगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन, समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गजल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था।
1: ओ अच्छा, क्या बात है भाई, अच्छी दिलचस्प कहानी।
0: हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
1: जी,
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मदोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के
1: मदोशी।

0: मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया, तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
1: जी,
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जी, जो राइटिंग है। और वो गाना इतना, मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी, मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया,
1: बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
0: हाँ, तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको
1: जी।
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात है,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: वाह, बहुत।
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए,
0: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे, मदहोशी है मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है। अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज्में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहां से आइडिया आया, कहां से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं।
0: जी
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा। मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी
0: जी
1: है,
0: जी
1: उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसकी कुर्बानी ने।
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14 वर्ष का।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज्में लिखी जाए। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं,
0: तुलसीदास की
1: तुलसीदास की,
0: रामचरितमानस।
1: जी हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे।
0: उर्मिला सखी वे मुझसे
1: हाँ
0: कहकर
1: हाँ
0: जाते,
1: हाँ हाँ
0: बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है। मैंने एक नया रास्ता निकाला, पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है, मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज्में लिखी, एक के बाद एक, जीता गया जीता गया और
0: जी
1: लिखता गया। इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस
0: ओह
1: किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था मैं,
0: हाँ
1: तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों हैं उसमें। तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल, उसमें वो

0: वनवास आता था वो, तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया तब मुझे मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है। अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
1: क्या बात
0: है। तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया। वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका। उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है और किस तरह से, मतलब हिंदू माइथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है।
0: पिछले 3 साल से लगातार, और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है।
0: तो हाँ, बहुत शुक्रिया
1: और बहुत बढ़िया बात कहिए। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है, और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था, जहां अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव है, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है। आपके अल्फाज हैं, आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है, और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर में आपने, एक शायर से हम उम्मीद करते हैं शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
0: जी,
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है, ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
1: क्या बात है।
0: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, वो आप आगे बढ़े। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
1: क्या बात है।
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल पर।
0: उनके हाल पर मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम्हारे रास्ते, मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए, ज्ञान जो है ना
1: जी,
0: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तख्लीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। वाह।
0: ये सीख है हम सबके लिए। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात।

0: वाह वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारतीय परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।
1: आप भी
0: नमस्कार।
1: बहुत शुक्रिया ममता जी।
2: जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म ताजमहल की ये कवाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और मीना कुमारी की आवाजों में। साहिल ध्यानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था।

0: नशा एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे, ये गजल आप सुन रहे थे पिनाज मसानी की आवाज में। कतील शिफाई का कलाम था, पीलू जी मसानी की तर्ज थी।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की याद

0: की उजाली।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी
1: हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विकी डोनर फिल्म से। आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का लिखा ये गीत था। रोचक कोहली आयुष्मान खुराना की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग।

0: यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: राहुल देव बर्मन की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आपने सुनी मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म थी तीसरी मंजिल।
1: ये चीज खास मैंने उस अंजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

रात कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा संगीत था सचिन देवबर्मन का, फिल्म तीन देवियां का गीत आपने सुना।

0: गोविंद अय्यर के संगीत निर्देशन में कश्मीरी का लिखा ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या, हर रोज तुम रेडियो सुनती

0: रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: आनंद बख्शी का लिखा सूरज और चंदा फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: की गुड़िया फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, तुम चोर हो चोर।

इन जुल्फों में उलझ उलझ कर कई मुसाफिर भटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हाँ तेरा रंग

दास्ताने ओ जाने जरा नजरे मिला ले समझी अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हट तेरा रंग

हूँ मैं खरे खरे, जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बता दूँ मैं। पास अगर तू आ जाए सांस सांस टकरा जाए, दिल क्यों धड़कता है तुझको दिखा दूँ मैं, चीर पे चीर जला के मुस्का के।

0: पचासी झटके तेरा
1: रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है

कुमार बरवंकवी की रचना आपने सुनी, नौशाद का संगीत था, साज और आवाज फिल्म में यह आवाज थी मोहम्मद रफी की। अब यादों की महफिल के कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विवेक।

बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रोताओं कार्यक्रम सुरीला सफर में, क्योंकि ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है आपके रेडियो सेट पर। श्रोताओं, मौसम कोई भी हो, कहीं रिमझिम की फुहार है, कहीं सूरज की तपिश, ये आप बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे आजकल। तो मौसम कोई भी हो, हर पल आपके संग है विविध भारती, आपके रेडियो सेट पर है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बातें हैं और हम हैं, आप हैं, साथ साथ कार्यक्रम है सुरीला सफर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज की इबारत को लेकर अपनी बातें लिखी हैं, और कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो नहीं लिखे हैं। तो बस आप अपनी जो है बातें लिखिए, और आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai, और हमारे नए श्रोता भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। और अब आज की इबारत आपके लिए पढ़ देते हैं। क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? क्या सचमुच पलकों के पीछे छुपकर कोई कुछ कह जाता है?

क्या काजल सचमुच नैनू में बसता है? हो ना हो, लेकिन ये गलत फहमियों का जहाँ भी कुछ कम खूबसूरत तो नहीं। रेत का समंदर, जरा सोच कर देखो, अगर ये दिल ना होता, जज्बातों का रंग महल, जितने दरवाजे उतने पहलू, उतने अरमा उतनी ही ताबीरें। इश्क के असर को छुपाए कि मोहब्बत क्या सचमुच लाखों में एक हसीन होती है, या फिर शायद कस्तूरी की तरह जो चोरी चोरी चुपके चुपके शाही पान में खुशबू बिखेर जाती है। न रखो गलत फहमियाँ, न पूछो भला शबनम मुस्कुराती कब है, रात कब जागती है। देखो कि दिल टूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, खुशफहमियों का जहाँ कुछ रहने भी दें। जब सुलझ जाए गलत फहमियों की रेशमी डोर, बदगुमानी के बादल जब हट जाएं, जब मोहब्बत के दीप जलें, तुम आ जाना। अजब फहमी गलत फहमी के दरमियान हूँ इबादत, मैं तुझे लिखती हूँ कि तू मुझे लिखता है। श्रोताओं, आप समझ ही गए हैं कि आज दरमियां होती गलत फहमियों की बातें हम करने जा रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी जो बातें हैं वो इसको लेकर लिखे भी हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि क्या आपके जीवन में कभी गलत फहमियों का दौर आया, और आपने इस दौर को किस तरह, किस खूबसूरती से निभाया, ये आप हमें जरूर बताएं। क्योंकि कई बार गलत फहमियाँ जो होती हैं वो होती हैं और बड़े मनमुटाव भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार गलत फहमियों के बावजूद भी बड़ा प्यार उमड़ता है। हमारे सभी श्रोताओं का फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

अभिनेत्री नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था द ट्रेन फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, आरडी बर्मन की तर्ज थी और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हम खुशफहमी और गलत फहमी के माया जाल में जकड़े हुए हैं, हमें लगता है जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम तारीफ के काबिल हैं, जब भ्रम टूटता है तो गलत फहमी का सत्य स्वीकारना पड़ता है। और इन्होंने गीत जो चुना है जब दीप चले आना, तो देखते हैं कि कौन कौन से गीत आज के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वैसे आज की फिल्में भी आप जरा ध्यान दीजिए श्रोताओं, ये फिल्में भी कुछ इसी तरह की हैं, द ट्रेन और आगे भी जो फिल्में आप जिनके गीत आप सुनेंगे उन्हें आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने वो फिल्में देखी हैं तो उनके बारे में आप बता भी सकते हैं कि उनमें क्या गलत फहमियां थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि गलत फहमियां भ्रम भ्रांति यानी जीवन का एक छुपा हुआ राज जो प्यार मोहब्बत में बहुत खूबसूरत लगता है, जो रेत का समंदर यानी अधूरी चाहतें पूरी कर देता है, सुहाने सपने सजाता है, मन की उम्मीदें बढ़ाता है, कल्पना रम्य सुख देता है, प्यार का कोमल मोहक आनंद लुटाकर खुश कर देता है। गलतफहमी को खुशफहमी बना देने वाली आज की सकारात्मक इबारत है। और वो चांद मुस्कुराया और पलकों के पीछे क्या तूने कह डाला मुझसे भला काजल तेरा रंग महल के दस्तरवाजे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत का मुख्य विषय भ्रम और यथार्थ तथा प्रेम की अनुभूति है, यहाँ तार्किक सत्य के बजाय खुशफहमियों के रोमांटिक संसार की को तरजीह दिया गया है, क्योंकि यही जीवन और प्रेम को जीने का हौसला देते हैं। भाषा बेहद काव्यात्मक संवेदात्मक और उर्दू हिंदी के खूबसूरत मिश्रण जैसे जज्बात ताबीरें बदगुमानी इबारत ऐसे सजी है, इसमें गद्य होते हुए भी एक लय और संगीत है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज कहीं जाना है लेकिन गीत तो सुनती रहूंगी, एक गीत जिसका मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपकी इबारत में ये शब्द रंग महल के दरवाजे, तो देखते हैं। और पलकों के पीछे भी इन्होंने चुना है, देखते हैं कौन कौन से गीत आज होते हैं शामिल। और एक और श्रोता ने चांद तो जब भी मुस्कुराता है, पलकों के पीछे से कचरारे कचरारे, ये दिल ना होता बेचारा रंग महल। और एक और श्रोता जिन्होंने कुछ शब्द इसमें से चुने हैं, ये शब्द हैं कि चांद पलकों के पीछे रंग महल हसीना चोरी चोरी चुपके चुपके शबनम रेशम की डोर दीप हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि नैनों में दर्पण है चांद आहें भरेगा पलकों के पीछे से, और लाखों हैं निगाह में, इन्होंने भी बहुत सारे गीतों को पसंद किया है। तो अगला गीत आपको सुनवा देते हैं और आपको बताना है कि ये जो फिल्म है श्रोताओं इसमें मुख्य अभिनेत्री कौन है और कई

देवानंद साहब की एक बड़ी अजीब अदा इस गीत में नजर आती है श्रोताओं, उनके हाथ में एक चीज है, क्या आप ने ध्यान दिया है तो आप हमें जरूर लिखकर बताएं। और एक अभिनेत्री जो नजर आ रही हैं वो तो तनुजा हैं, दूसरी अभिनेत्री के बारे में हमने आपसे पूछा है तो आप हमें जल्दी से इसका जवाब भेज दें। और वैसे जो सवाल हमने पूछे हैं उसके बहुत सारे जवाब भी हमारे पास आए हैं, बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं अपने सभी श्रोताओं का हमारे गद्यांश को पढ़ने के लिए और उस पर कमेंट्स करने के लिए, अपने गीत और अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन दर्शन की बहुत ही गहरी बात को एक रूपक के रूप में दर्शाया गया है। जिंदगी कोई गणित या सीधा समीकरण नहीं बल्कि भावनाओं, उम्मीदों और एहसासों से बुना हुआ एक ऐसा कैनवास है जहां खूबसूरत गलत फहमियां ही इसके रंग को जीवंत बनाती हैं। जीवन की कला इन्हीं कोमल भावनाओं और गलत फहमियों को संजोने में है। कभी कभी किसी बात को सकारात्मक रूप से मान लेना भले ही वो पूरी तरह से सच न हो, जीवन को जीने योग्य और खूबसूरत बना देता है। गलत फहमियां

0: अक्सर वे उम्मीदें और सपने होते हैं। तो एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती का सुरीला सफर, ये एक सफर कल कौन सी इबारत आएगी, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर भी गलतफहमी और खुशफहमी के दो पहियों के बीच पिसता फंसता चला जाता है, चलता रहता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां विचारों, शब्दों या इरादे का गलत अर्थ गठन होता रहता है, कभी धूप तो कभी छांव। और इन्होंने एक और हमारी एक और श्रोता लिखती है कि चांद जाने कहां खो गया, आओ तुम्हें चांद पर ले जाए, हुस्न से चांद भी शर्माया है। और कुछ गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आदमी की जिंदगी खुशफहमी और गलतफहमी से भरी हुई है, मुझे खुशफहमी रहती है कि मेरी कमेंट अच्छी है और आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, आप कमेंट नहीं पढ़ती, तब महसूस होता है कि मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में था। तो ये भी गलतफहमी हो सकती है आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मैंने, ऐसा मुझे याद पड़ता है, मैंने कई बार आपकी कमेंट पढ़ी है, तो हो सकता है कि यहां भी कुछ गलतफहमी हो। बहरहाल, जो गलत फहमियां हैं उन्हें मिटा देना ही ज्यादा अच्छा होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत, आज की इबारत की पहली लाइन, क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है, आपका जवाब इन गानों में मिल गया। जी हाँ, ये चांद सा रोशन चेहरा, शमी कपूर का रोमांस और चांद, क्या बात है। इन्होंने अपनी तरह से गीतों को चुना है। एक और श्रोता लिखती है कि अजीब कश्मकश है ये यकीन और गुमान के बीच, मैं खुद को तुझ में ढूंढती हूँ या तो मुझ में ठहर जाता है, अजब बंदिश अजब आजादी के दरमियान हूँ, किताब मैं तुझे पढ़ती हूँ कि तू मुझे पढ़ता है, क्या बात है। और इसी तरह का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं। शशि कपूर इस फिल्म में है और क्या रोल है उनका इस फिल्म में, क्या आप बता सकते हैं?
1: प्रवीण

शशि कपूर एक इंजीनियर के किरदार में होते हैं। श्रोताओं, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत था। इस फिल्म में बड़ी अजब सी गलतफहमी थी जो चेहरे को लेकर थी, और अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। वल्लभ भाई पटेल का लिखा ये गीत था, लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाजें थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो चांद खिला, वो तारे हंसे, आंखों में काजल, नैनों में बदरा छाए, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की डोर को हकीकत से ज्यादा गलत फहमियां कमजोर करती हैं। सच्चाई और बातचीत के अभाव में पनपी ये अजब फहमियां करीबियों में दूरियां पैदा करती हैं। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहना कुछ था वो कुछ समझे, और मुझे कुछ और कहना था। जी हाँ, लेकिन अगर ये गलत फहमियां हो जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं कि मोबाइल पर बात कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से ही कुछ मना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके बीच कोई अनबन हो जाए तो आप एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं, ये गलत फहमियां किस तरह से दूर करते हैं, क्योंकि ये भी समझदारी की ही बात होती है। श्रोताओं, गलत फहमियों में कुछ रखा नहीं है, जो खुशफहमियां हैं वो और गलत फहमियां, इन दोनों में बड़ा बारीक सा रेशम के सा अंतर होता है, इसे पहचानने की जरूरत है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने, एक जब दीप जले आना जब शाम ढले जाना, दो दिल के टुकड़े टुकड़े करके, और इन्होंने भी अपनी जो एक लिस्ट है वो बनाई है। एक और श्रोता लिखती हैं, गलत फहमियां रिश्तों में दूरियां बढ़ाती हैं, जबकि खुशफहमियां मुस्कुराने का एक बहाना बन जाती हैं। जब मन की धुंध छट जाती है, बदगुमानी के बादल हट जाते हैं और विश्वास के दीप जल उठते हैं, तब मोहब्बत अपने असली रंग में खिलती है। लेकिन हर गलत फहमी बुरी नहीं होती, कुछ खुशफहमियां रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, रेत के समंदर में दूर दिखाई देती हैं, उस नमी की तरह जो भले ही हाथ में ना आए लेकिन सफर को उम्मीद और दिल को मुस्कान दे जाती है। जब रेत की बात है श्रोताओं, तो रेत में अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नदी है या समंदर है, इसे क्या कहते हैं? अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। और एक और बात है कि कस्तूरी मृग जो है उसे हमेशा ये गलतफहमी होती है कि कस्तूरी कहीं और है। इस बारे में आप क्या जानते हैं तो हमें जरूर बताएं। इस फिल्म में एक्ट्रेस के दो रोल को आपको बताना है नाम।

जुड़वा लड़कियों को लेकर जो ये फिल्म बनी थी, इसमें गजब का सस्पेंस था। श्रोताओ, मेरा साया फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोलते मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कि दो नाम कौन से थे अभिनेत्री साधना के, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा है वो भी जरूर हमें बताएं। और गीता और निशा, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? श्रोताओं, अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि रेल के सफर के दौरान बड़ी सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप हमें जरूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की हमारी जो इबारत है, मैं हमको तो पता भी नहीं चला कि हम चांद से रेत पर आ गए, और चांद से रेत पर आ गए और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हुए हो गए, इस साजिश में कब फंसे पता भी नहीं चला। एक और श्रोता लिखते हैं कि ज्वेल थीफ का जो गीत हमने आपको सुनाया, उसमें मछली पकड़ने का कांटा और साथ में उसमें फंसी मछली है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था कि कौन है उसमें मुख्य अभिनेत्री, तो वैजयंती माला थी। एक और श्रोता ने लिखा है, अगर दिल से एहसास, उम्मीदें और ये प्यारे भ्रम निकाल दिए जाएं तो जीवन एक अंतहीन रेत के समंदर जैसा बंजर हो जाएगा, जहां फैलाव तो बहुत होगा पर सुकून की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही इस रसीन जिंदगी में रस घोलती हैं, जैसे कस्तूरी अपनी खामोश खुशबू से पूरे माहौल को महका देती है, ठीक वैसे ही जज्बात इंसानी रिश्तों को जो है जिंदा रखते हैं। कभी कभी जिंदगी को मरुस्थल बनने से बचाने के लिए तर्कों को परे रखना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान दिल की गहराइयों से जुड़ता है तभी वो रिश्तों के असली रूप को जी पाता है और जीवन में प्रेम के दीप जलते हैं। क्या ही सुंदर बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं, इबारत के लिखने के दायित्व को सौंपने के क्रम में अग्रसर हो रही प्रस्तुत आज की इबारत मन के भेदों में निहित अंतर्द्वंद को भली भांति स्पष्ट कर रही है, और इस दृष्टिकोण से ही आज की ये इबारत स्वयं में ही इबादत करने योग्य है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिश अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी हैं।

ये गलत फहमी भी श्रोताओं अपने आप में बड़ी खास होती है कि जिधर देखो बस एक ही तस्वीर नजर आती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप बैठे कहीं और हैं लेकिन आपको बस वही वो दिखता है या दिखती हैं चीजें?

इस गीत में श्रोताओं और इस फिल्म में सांपों के बारे में बहुत कुछ है या सांप के बारे में बहुत कुछ है। वैसे रस्सी और सांप, इनमें तो बहुत गलतफहमियां होती हैं। क्या आपको हुई हैं?

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खुशफहमियां और गलत फहमियों में के बीच क्या क्या होता है, दो दिलों में कैसी कैसी शरारतें पैदा होती हैं, तरह तरह के गीतों का मजा लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमी जिंदगी में अक्सर गलत फहमियां हो जाती हैं, कभी हम व्यर्थ की खुशफहमी पाले रहते हैं, परिणाम जब इसके विपरीत आते हैं तो पता चलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कस्तूरी सुख है, हिरण रूपी चैतन्य आत्मा में कस्तूरी सुख है और नाभि यानी वर्तमान पर्याय में है। जी हाँ, ये तो है ही है, काव्यात्मक तरीके से आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि कस्तूरी मृत

क्यों वन वन घूमता है? जी हाँ, वो तो कस्तूरी की सुगंध के पीछे घूमता है श्रोताओ, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्तूरी है वो कहीं और है, लेकिन ये तो कोरा भ्रम होता है, वो तो उसकी नाभि में होती है। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कई दिनों से घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ इन्होंने बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं कि कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ मूछों को लेकर संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ये गलत फहमियां पैदा करती हैं, और कभी कभी ये जब खुश फहमियां बन जाती हैं तो कभी थोड़ा सा हम खुश भी हो लेते हैं। एक और श्रोता लिखती है कि गलत फहमी पे मैं बताना चाहूंगा, मेरी धर्म पत्नी जुड़वा है, अपनी जुड़वा बहन से सिर्फ 10 मिनट छोटी है, दोनों एक ही स्कूल में है और एक ही क्लास में पढ़ती थी। धर्मपत्नी ने मुझे सगाई के बाद बताया कि उन्हें टीचर्स ने गलतफहमी से बचने के लिए कह रखा था कि स्कूल जब भी आए तो साली साहिबा एक चोटी बनाए और धर्मपत्नी पत्नी दो चोटी रखें। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे दोनों को पहचानने में गलतफहमी नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात है। और इस तरह से जुड़वा बच्चों में भी होता है श्रोताओ, तो जो एक गलतफहमियां जीवन में होती हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन हमें किस तरह से इससे निपटना है और कुछ एक तरीका तो गोलमाल फिल्म में जो अमोल पालेकर हैं उन्होंने भी बताया है। तो आप हमें बताएं कि ये दो नाम कौन से थे, और संजीव कुमार की एक फिल्म थी जो गलत फहमियों पर आधारित थी, जिसमें देवेंद्र वर्मा भी थे, मौसमी चटर्जी भी थी और बहुत सारे कलाकार थे। तो आप बताएं उस फिल्म के बारे में।

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था जो गलत फहमियों पर आधारित ये फिल्म थी, श्रोताओं। और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं। तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं, इनमें कौन सी फिल्म आपको ज्यादा पसंद है, ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में। और एक फिल्म संजीव कुमार की थी जिसमें देवेंद्र वर्मा, और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी। तो आप इसके बारे में भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी और भ्रम दोनों ही मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भ्रामक स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मूल कारणों और प्रभावों में गहरा अंतर है। जहां गलतफहमी दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में कमी का परिणाम है, वहीं भ्रम व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता में त्रुटि या मानसिक विकार है। एक और श्रोता ने लिखा है, फिल्म ज्वेल थीव देवानंद, अशोक कुमार, वैजयंती माला, पूरी फिल्म में लगता है कि देवानंद ही है जो असल जो चोर है, लेकिन वैजयंती माला का पहचान की इन्होंने मतलब फिल्म की जो बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जागते हुए भी सपनों को देखते हैं और कल्पना लोक में पहुंचकर बहुत कुछ देखते हैं, पर असलियत में वहां कुछ भी नहीं होता। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि यहां भी हमें गलतफहमी होती है, जी हां, कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है मेरा साया फिल्म में, एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया।

आपकी कसम फिल्म का ये गीत था, मुमताज पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज थी और श्रोताओं दो जो कलाकार हैं, गायक कलाकार, उनके बारे में हमने आपसे पूछा था। ये लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर जी की बात हम कर रहे थे क्योंकि इनके गाए हुए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बड़ी सारी गलतफहमियां हो जाती हैं कि किस गीत को किसने गाया है। एक और श्रोता लिखती हैं कि संजीव कुमार मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म इतनी सी बात का इन्होंने जिक्र किया है। जी हाँ, हम लेकिन बात कर रहे हैं फिल्म अंगूर की। और एक और श्रोता लिखती हैं कि पारिवारिक सामाजिक ज्वलंत विषय पर आधारित फिल्में हैं ये, ऐसी गलतफहमी अगर आ जाए तो बैठकर सुलझा लें, नहीं तो कितनी जिंदगियां जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मेरी महबूब फिल्म के बारे में कि अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म ये थी, साधना पर फिल्माया गया गीत था और साथ ही अमिता भी नजर आती हैं श्रोताओं, और इस गीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और लहजा माने रखता है, यदि कहे गए शब्द और बोलने का तरीका मेल नहीं खाते तो गलतफहमी हो जाती है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात रखने का इंतजार करते हैं या आधा सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आपको फिल्म और कलाकार बताने हैं।

चित चोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव

अनमोल पालेकर और जरीना बहा पर फिल्माए गए ये गीत आप सुन रहे थे चितचोर फिल्म से। आवाजें थी ये सुदास और हेमलता की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपकी सभी कमेंट्स के लिए आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं डॉक्टर्स डे पर। आज पहली जुलाई कैलेंडर की वो तारीख जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आज की तारीख उन डॉक्टर्स के नाम है जो हमें बीमार होने पर नया जीवन देते हैं। मरीज के अटूट विश्वास और एक चिकित्सक के निपुण प्रयास के बीच जो अदृश्य सेतु बनता है वही संसार की सबसे सुखद अनुभूति होती है। डॉक्टर्स तमाम दवाइयों के साथ साथ जब अपनी दुआ की पोटली थमाते हैं और कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे, तो आपकी आधी बीमारी उड़न छू हो जाती है। आप सबके मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं जब सफेद कोट में एक चिकित्सक आपसे मुस्कुराकर नसीहत की पोटली थमाते हैं, तब आप और हम यही कहते हैं

यीशु ईश्वर के बाद जीवनदायक हमारा डॉक्टर ही होता है। ये दिन देश के सभी डॉक्टर्स के प्रति आभार जताने का एक खास मौका है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1961 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म और उनकी याद का दिन भी 1 जुलाई है। उन्हीं की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स की अनिद्रा और अथक परिश्रम में ही जाने कितने परिवारों की चैन की नींद और अधरों की खोई हुई मुस्कान महकती है। जब डॉक्टर आपको मुस्कान देते हैं तो बदले में उन्हें भी आप

कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह खुद नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर फरिश्ता यानी डॉक्टर को भेज दिया। रात के 3 बज रहे हो या सुबह के 4, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कोई डॉक्टर किसी की जिंदगी बचाने के लिए जाग रहा होता है। किसी ने कहा है, मर्ज का खौफ मिट जाता है पल भर में, जब कोई डॉक्टर मुस्कुरा कर कह दे कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दवाएं तो सिर्फ साइंटिफिक फॉर्मूला है, असली जादू तो उस डॉक्टर के भरोसे और उनकी डांट में होता है जो अपनों जैसी लगती है। अपनी खुशियां, अपने त्योहार, यहाँ तक कि अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं डॉक्टर्स। ये हौसला सिर्फ डॉक्टर के पास ही होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाओगे। कहते हैं कि विज्ञान जब करुणा से हाथ मिलाता है तब एक चिकित्सक का जन्म होता है। अस्पताल के शांत गलियारों से लेकर आपातकाल की उन तनावपूर्ण रातों तक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की हर धड़कन में किसी बेबस परिवार की उम्मीद मुस्कुराती है। तो आज डॉक्टर्स डे पर देश के और दुनिया के सभी डॉक्टर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित

0: शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीवी जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस

0: एस बनाए रखेंगे।
1: नवाचार हमारी सोच कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
2: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम

0: आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: India's engagement. भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम

0: ने कहा है कि अगले दो दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले दो दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मॉनसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
2: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ

0: हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है, रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है, कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका, जी हाँ मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
1: जी।
0: तो विमलेश जी अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है।
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
1: जी,
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
1: जी,
0: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोदकर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ, पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
0: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
1: जी,
0: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना न भूलिए। और अब बारी है हमारे

0: कार्यक्रमों की।
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
6: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
7: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
4: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
4: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
6: जी मैम।
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
4: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।

0: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: हाँ, जी मैम।
4: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
0: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
1: सो हम अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांबर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
4: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
3: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।

ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती है, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगोई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
2: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे भाई, ये भी
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
3: मैं बोलू? अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं।

0: उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
2: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो
1: अच्छा। और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया अनाज मांगो, करो।
3: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
1: मुखिया जी, मुखिया जी!
4: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि
4: वो आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
4: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
4: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
4: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
4: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
4: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
6: मुखिया जी,
4: अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
4: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं।
2: मुखिया जी, मुखिया जी,
4: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
2: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
4: चढ़ रहा है। अरे तो तीसरी मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
4: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यहीं रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
4: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या हो रहा है? नहीं, इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। मैं लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर

0: बांगुई। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार
2: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को सभी सखाओं को सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ उनका मन का मौसम तो वैसा ही है।
2: बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
1: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना?
2: जी हाँ, बिल्कुल।
1: और बहुत अच्छा लगता है, अपना एक आनंद अलग ही है आरती
2: जी। बिल्कुल,
1: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रस्ते में भीग कर आती थी? मुझे तो याद है
2: बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता ना कि हम जान बूझ के भीगते हैं, फिर ना अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है जब बारिश का मौसम आता है, तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
1: उसका एक अलग ही मजा है। बिल्कुल, बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे, जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ, कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं।
2: बहुत, सच में बारिश जो होती है ना एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना, वो भी एकदम खिल उठता है।

0: जब बारिश की बूंदें पड़ती
1: हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदें ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदें जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखी और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए।
0: बिल्कुल, तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार, जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें, या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी, जो कि झारखंड की पहचान है।
1: अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम।
0: जी बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर।
1: आहा, क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है।
0: बिल्कुल। लेकिन हमारे बीच स्वस्थ जो
1: प्रतिस्पर्धा चलती है। बिल्कुल, हमारे सखी और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं ना, निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है। आपने कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती? आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें आपने अटेंड किया, उसको अटेंड किया, या आप किसी से प्रतियोगिता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं?
0: प्रतिस्पर्धा में आप कहाँ तक चले गए, कितनी दूर तक चले गए, यानी कि आपने मन से आप कितनी दूर तक चले गए, कि मतलब एक होती ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता है, कोई बात नहीं चलो उसने आगे किया अब हम भी अच्छा करेंगे, एक होती है कि उसने कैसे किया,
1: मैं करके
0: पीछे खींचे। हाँ। तो आप बताइए कि मतलब कौन सी मतलब आप प्रतियोगिता के बारे में,
1: आपके कहने का मतलब ये है आरती कि कई बार क्या है, कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
0: जी हाँ,
1: है ना। और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना, किसी को बढ़ता हुआ देख करके, उसकी शर्ट मेरी सफेद, मेरी शर्ट से सफेद क्यों वाली जो जलन है वो हमें थोड़ा परेशान भी कर देती है
0: और पीछे भी खींचती है।
1: पीछे भी खींचती है, आप एक ना एक दिन फिर पीछे हो जाते हो। आप उस दौड़ में खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने देखी है ना, तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रखें। तो बताइए आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसी,
0: आप अपना नजरिया हमें बताइए। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर।
1: अच्छा,
0: देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं, लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहता है, ये हमारे फैमिली डॉक्टर है, कि कुछ भी हो, सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो, सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उनकी राय मांगते हैं।
1: हाँ।
0: फिर वो जब हम कहते हैं कि नहीं आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसपे सबसे पहले हम विश्वास करते हैं, तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे।
1: बताइए आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं, और आपका जीवन में, आपके जीवन में उनका क्या स्थान है, कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी उन्होंने मुसीबत को हल किया।
0: जी है ना, आप बताइए।
1: तो इन सभी पर हम विचार करेंगे, गीत सुन ले। और
0: देखिए आप बस मेरे साथ ना ऐसा मत कर
1: व्यंजन लेके आई हैं।
0: जी बिल्कुल, मैं व्यंजन इतना अच्छा लेके आई हूँ, और हमारे जो श्रोता है वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में। सोचिए कितना, कहां बारिश का मौसम आते ही पकौड़ों की, तो मतलब ऐसा है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना, उसके साथ पकौड़ों की
1: गर्मा गर्म पकौड़े मिली होती है। बिल्कुल सही कहा। तो बताइएगा आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह से पकौड़े बनाते हैं, कई तरह के पकौड़े,
0: कौन से पकौड़े बनाते हैं,
1: कौन सी बेसन के, और
0: ताकि हम उसको एकदम उसको सोच ले, कल्पना करके उसको हम खा ले।
1: नहीं भी हमारे लिए भेजेंगे हमारे सखी और सखा, और हम उसे खा भी लेंगे। ठीक है, क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम हो रहा है।
0: बिल्कुल, एक गीत लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं। पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए, है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है,
1: डॉक्टर,
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं।
0: हाँ।
1: और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते या बहुत दूर नहीं जा सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं।
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके,
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है,
1: बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीजें होती हैं तो हम फोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयां ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं, अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस चीज का विशेषज्ञ है, तो आप वो उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं।
0: हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा
1: जी,
0: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए। ऐसी स्थिति भी होती है कई बार
1: जी।
0: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था, घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी, तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते थे।
1: बिल्कुल,
0: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है
1: जी। ये एक जो चीज होती ना, जो आप हम मानसिक जो

0: ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है आपकी वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
1: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है और ये भगवान जैसे होते हैं पारिवारिक चिकित्सक हमें हमारे लिए भगवान समान है और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
0: जी, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
1: और देखिए हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का एमबीबीएस कोर्स कम्प्लीट हो गया है और छोटा बेटा एमबीबीएस थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
0: बहुत अच्छी बात है। और एक महिला है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं यानी उनके पास जाते हैं, अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं, इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
1: क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है हमारे जीवन में, उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है। पारिवारिक चिकित्सक, बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है तो हम उन डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें मतलब हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं।
0: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूं। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का

0: ध्यान आता है, इसलिए मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर डॉक्टर कितने ज्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
1: बिल्कुल सही कहा। और चलिए अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है
0: तो एक गीत सुनते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता है जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अब ये आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल
0: जी।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में जी, महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारी सखा है उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिरदर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है उसे।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती है ना उससे हाँ। थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम
0: हाँ, तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहनें पहनती हैं, जब हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती हैं, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम जैसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नासुक हस्तशिल्प है ये
1: जी। और जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
1: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
0: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है इसको जलाकर देखा जाता है।
1: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
0: अच्छा
1: जी। और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूखकर काली राख में बदल जाती है। इसकी प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
0: और साथ ही इन्हें गर्मी

0: सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं।
1: जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता है
0: कि कैसे इसको रखना है, और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं, और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
0: बिल्कुल।
1: ये हाथ से और मेहनत से बनाई
0: जाती है, और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है, और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है ये।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना?
0: गीत तो सुन लेते हैं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
1: मुझे मालूम था आप कहने वाली हैं।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने
1: जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं।
0: करिए।
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ।
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारी सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि वो हाँ। क्या लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और

0: परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और देखा जाए तो जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
1: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कम्पिटिशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना, जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
1: हाँ,
0: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
0: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
1: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
0: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्मविकास है हम वो कर सकें, न कि हम उसमें लग के अपने को नुकसान पहुंचाएं,
1: अपने जीवन को हम बर्बाद कर लेते हैं, जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवाकर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा।
0: ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं।
1: हाँ।
0: क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं।
1: हाँ।
0: फिर हमें हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी

0: भी तरह से आगे
1: निकल जाए। ये जो हमारे अंदर भावना होती है ना, सुरक्षा की भावना कहते हैं, और आरती सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं। कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है, आप हार कर भी जीत जाते हैं।
0: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे एक खुशी दे सके,
1: हाँ,
0: तो सबसे बड़ी बात ये होती है,
1: प्रतियोगिता
0: उसके चेहरे की हंसी देख के ही आपको लगेगा कि
1: मजा आता है। अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है। वो कोई भी प्रतियोगिता
0: आपको मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उसको मजबूत रखिए।
1: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत, अगर आप हार कर भी आपका मन नहीं हारा है फिर भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है वो हमें,
0: वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
1: बिल्कुल, इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में, जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदाक नहीं जी, अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और आगे भी रहेगा।
0: हाँ जी हाँ, आगे भी रहेगा। वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं पकौड़े,
1: बनाकर लेकर आए हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने, तो बात करते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं,
1: बिल्कुल।
0: जो हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खोलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या
1: बहुत शानदार, बहुत शानदार,
0: बहुत शानदार, ऐसी तो मतलब सोच नहीं सकते।
1: बिल्कुल, इन्होंने देखिए कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें तो कार्यक्रम का मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक मिलाकर बनाया जाता है और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए, आलू, पालक, बेसन लीजिए और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए। मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाएं बिना पानी डाले और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें, कुरकुरा होने तक इसको पकाएं, मध्यम आंच पर दोनों तरफ से इसको हिला के पकाते रहें, अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताइए, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिये की चटनी के साथ खाइए आंटी जी।
0: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि पकौड़े छान के निकल ही रहे,
1: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना। हाँ।
0: एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
1: हाँ हाँ। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हाँ?
0: और हमारे जो एक है हमारी जो श्रोता है वो लिखती है कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
1: क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया है ना।
0: मैंने कहा ना
1: और कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है, गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिये का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी, टोमेटो केचप के साथ

0: इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है और ये मौसम का साथी है। भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो, तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसकी भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना आरती, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर, मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, या फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज, आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए और छमाछम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़े बताया है रेसिपी, तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें, अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें, धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कढ़ाही में सरसों का तेल गर्म करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें, और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, इसे सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
0: तो पकौड़े बहुत खा लिए, गीतों का आनंद
1: लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे है ना।
1: बिल्कुल।
0: और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माताजी अध्यापिका थी और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहां मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियां, कुछ कविताएं, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीजें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
2: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो, मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
2: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देशी बोलियों को भी मैं जानता हूँ ठीक से, उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
2: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई

0: पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
0: धर्मयुग कादम्बनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं लिख सकता हूँ। मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
0: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय। और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं
0: जी,
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
0: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
1: जी,
0: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लोक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृति मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई है। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती है नकारात्मकता को दूर करके।
1: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती हैं। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
0: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
1: उसका आकाश
0: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था। उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
1: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
0: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
1: जी,
0: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर 3 भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
1: जी।
0: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है और व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
1: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
0: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और 2-3 राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
1: जी।
0: कहीं न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
1: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद मिला
0: जी।
1: तो रेड्डी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपके व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग्य में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग्य के पितामह है वो, और उनके रचनावली के 6 खंड है वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग्य लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग्य बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज्यादातर वो व्यंग्य मेरे पहले व्यंग्य संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित है। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग्य है जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है।
0: जी।
1: ये सीधी सी बात होती है, अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो जब वो नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे

0: ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं न कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है। वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। इस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया
1: जी।
0: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझाएं, क्योंकि व्यंग जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षण में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना
1: जी,
0: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का
1: जी,
0: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहां वहां फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है
1: जी, जी।
0: तीसरा जो है वो सांधे पीछे है, ये हमारी व्यवस्था में मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है। पूरा मुहावरा है कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं। अंधे पीसे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाए जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है। और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जिन्हें समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई तीन पेज चार पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गई, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के सनिधि मेरा चौथा व्यंग संग्रह है जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक ही बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का संदर्भ। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है, उसमें और भी जो व्यंग है वो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों पर है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है,
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सन्निधियों में मिलेगी
1: जी। तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया
1: जी।
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है
1: जी।
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी है, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे पत्रिकाएं छापेंगे। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया, धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई,
1: पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था पाठक का।
0: हाँ, बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का, और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी।

0: बरसाई के समय एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कब हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं।
1: जी।
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है और व्यंग विधा में हाथ आजमा रहा है। अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हम उसे भी व्यंग्य समझ लेते हैं और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं। तो आपसे अगला सवाल मैं कर रूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ और मुझे एक गीत बहुत पसंद है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम
1: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रही हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है। जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू की राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है। प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था। धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूं जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में। हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी,
1: आपने मीम की बात की है। मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य, ये कैसा लगता है आपको?
1: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी,
1: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहां तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं। और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं, वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
0: जी,
1: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।
0: जी,
1: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
0: नहीं हो पाया। जी,
1: ऐसा लगता है कि व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया।

0: कुछ और लोगों ने हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं, ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं, कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका लें किसका ना लें, वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं है, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे, मेरा अनुमान ऐसा है।
1: क्योंकि समय कम है लोगों के पास, और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते हैं, क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है। तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है। तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप व्यंग्य लेखक हैं, क्या व्यंग्य सभी पर लिखा जा सकता है या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
0: जी, ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहाँ तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है
1: जी।
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है, उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए।
1: जी, जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है।
0: जी, और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आपने तो जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है? व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
1: मतलब वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी चाहिए।
0: उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं, किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं, और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
1: जी, हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर, और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है
0: जी।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
0: जी जरूर, कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
1: क्या बात है?
0: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनवाएं।
1: आइए सुनते हैं।

0: शंकर जी, तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडम्बना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग्य को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग्य पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है। व्यंग्य का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग्य बिरादरी से बाहर है। लेकिन व्यंग्य, मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिलमिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो। तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग्य का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग्य एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है। तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है, इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा। तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूँ जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग्य लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंग्यकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, ये हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं,

0: वो संपादक को देगा तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीज तुरंत मिलती जा रही है, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
1: जी जी, एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए
0: जी।
1: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है, तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
0: जी मंदाकिनी जी ने आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना।
1: जी,
0: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है और वहां पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं
1: जी।
0: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
1: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
0: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे जैसे हमारे यहाँ सूरदास
1: जी,
0: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्रिय थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
1: जी, जी।
0: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे
1: जी, जी।
0: जिन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता
1: नहीं।
0: है और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पल्लवन
1: यायावरी से होता है। दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
0: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से।
1: तो जब बात रचनात्मकता की आती है तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
0: जी जरूर।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है, इसमें एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थी और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं, फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहां वो जिस जगह पे गया है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के खान पान, वहां के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़े तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
1: जी,
2: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर के यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है मैंने, मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं मैंने, प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं
1: जी।
2: और वहां पर जाकर के मैंने

0: केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया, जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं, और इसके अलावा जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है। प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है।
1: जी
0: जी।
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा
0: जी
1: जोखा लिखा है।
0: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे, दर्शन
1: दृष्टि और पांव,
0: दर्शन इसमें मेरा श्लेष है। दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है, मूर्ति, उसके दर्शन से भी है, और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन विश्व में आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है? क्या आप गए, यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं। मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है, इस चीज को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है? और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिलाकर के मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई, सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता, एलोरा, पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी।
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ, कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ, जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी में मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं। प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है। मुझे इस बात की, आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास न हो, मुझे भूल जाता है कि यहाँ फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी,
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

ये था जाने माने लेखक हरिशंकर राठी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब आपको सुनवाते हैं अपने स्टूडियो के कार्यक्रम। लीजिए प्रेषित है कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी, जहां युवाओं की सोच, सपनों और आवाज को मिलती है एक नई पहचान। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रोहित कुमार, और अगले कुछ मिनटों तक हम लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारी बातें, ज्ञान की, प्रेरणा की और मनोरंजन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के एक बेहद खास उत्सव, वन उत्सव की। जी हाँ दोस्तों, वन महोत्सव प्रकृति का उत्सव है, जो भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इस सप्ताह भर चलने वाले वृक्षारोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वनों की कटाई को रोकना और आम जनता के बीच पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला वन महोत्सव प्रकृति के प्रति हमारे प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक है। वन यानी जंगल और महोत्सव यानी उत्सव, अर्थात ये है पेड़ों और हरियाली का उत्सव। इस महोत्सव की शुरुआत हमारे देश में 1950 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना। दोस्तों, पेड़ हमारे जीवन का आधार है। ये हमें शुद्ध हवा देते हैं, जलवायु को संतुलित रखते हैं, मिट्टी को बचाते हैं और असंख्य जीव जंतुओं का घर भी होते हैं। आज जब प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जल संकट जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, तब वन महोत्सव का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थाओं और समाज के हर वर्ग के लोग मिलकर वृक्षारोपण करते हैं। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है, जो हमें प्रकृति के करीब लाता है और हमें जिम्मेदार नागरिक बनाता है। दोस्तों, पेड़ लगाना केवल एक पौधारोपण नहीं, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करना है। अगर हर व्यक्ति साल में एक पेड़ भी लगाए और उसकी देखभाल करे, तो हमारा देश फिर से हरा भरा हो सकता है। तो आइए इस वन महोत्सव पर हम सभी यह संकल्प लें कि एक पेड़ लगाएं, धरती को बचाएं। दोस्तों, चर्चा तो हमारी जारी रहेगी, आइए सुनते हैं वार्ता। सुरक्षित पर्यावरण, बेहतर जीवन, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। वार्ताकार हैं समीत खालिद।
1: पिछले 3 दशकों में ये महसूस किया गया है कि वैश्विक पर्यावरण की रक्षा करना दुनिया भर में प्रमुख चुनौतियों में से एक है। रियो डी जेनेरियो में आयोजित 1992 के पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस पर सहमति बनी। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था। राष्ट्रों द्वारा 2 महत्वपूर्ण चिंताएं उठाई गई थी, जो पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास थे। हमारे शास्त्रों में संतोष परम सुखम की बात की गई है। विकास वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति और समाज स्थायी सुख, शांति और संतोष का उपयोग करते हैं। वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण नहीं होता, बल्कि उनकी वृद्धि होती रहती है। असंतुलन असंतोष की जननी है। इन स्थितियों में आज की भोगवादी सभ्यता को बाहुल्य के स्थान पर सादगी और संयम को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। निश्चित रूप से कई वस्तुएं ऐसी होंगी जिनके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, और हमें इनके विकल्प ढूंढने होंगे। धरती पर घटते बढ़ते तापक्रम एवं मौसम परिवर्तन ने मौसम विज्ञान के विशेष को आश्चर्य में डाल दिया है। कई देशों में ये देखा गया है कि गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक ठंड, तेज तूफान एवं आंधियां चलना, बर्फीले भागों की बर्फ तेजी के साथ पिघलना धरती पर पर्यावरण असंतुलन का संकेत है। धरती के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए सन 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो समझौता के अंतर्गत मौसम परिवर्तन महासभा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पर्यावरण संतुलन को लेकर अनेक अच्छे सुझाव दिए गए थे। इसमें विश्व भर के बड़े व्यापारियों को तथा वे जो कारखानों के कारण प्रदूषण फैलाते हैं, उनको विशेष कोष स्थापित कर धन खर्च करने के लिए कहा गया था, जिसमें पेड़ पौधों को लगाना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम करने एवं मौसम में आए भयावह परिवर्तन को संतुलित करने के लिए

वनीकरण करने प्राकृतिक वनों को बचाने के लिए अपील की गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य अधिकांश ओजोन सहकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाना था। 1998 में मॉन्ट्रियल में दुनिया के 12 रासायनिक संदूषकों को खत्म करने के लिए वैश्विक सम्मेलन की स्थापना की गई थी। यूएनईपी प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी है, जिसका मिशन विश्व पर्यावरण की स्थिति की समीक्षा करने और पर्यावरण ज्ञान को लागू करने और आदान प्रदान करने के महत्व को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करना है। धरती की गर्माहट बढ़ने एवं पर्यावरण संतुलन गड़बड़ाने से धरती पर उगी हुई कोमल वनस्पतियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। एक अनुसंधान के अनुसार गत 100 वर्षों में सैकड़ों की संख्या में वनस्पतियां धरती से लोप हुई हैं। पर्वतीय चोटियों पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का धरती की गर्माहट बढ़ने से धीरे धीरे लोप हो रहा है, क्योंकि इनकी पर्यावरण प्रणाली इस गर्माहट का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें चोटी पर पाई जाने वाली वनस्पतियों का 4 से 6 मीटर की परिधि पर लोप हो गया। धरती के तापक्रम में लगभग 0.1 डिग्री सेल्सियस से 3.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जिसका प्रभाव वनस्पतियों पर पड़ रहा है। समुद्री पर्यावरण के अत्यधिक विषाक्त होने, अम्ल एवं लवणों की सांद्रता बढ़ने एवं तेल के विशाल टैंकरों के दुर्घटनाग्रस्त होने से हजारों टन कच्चा तेल समुद्री परत पर गिर जाता है, जिससे लाखों की संख्या में जीवों की मृत्यु हो जाती है। एक ओर जहां सभी महासागर प्रदूषण से भयावह रूप से ग्रस्त हुए हैं, उसी प्रकार पिछले 100 वर्षों में धरती एवं समुद्री तापमान में भारी परिवर्तन आया है। मौसम वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार गत 40 वर्षों के समुद्री तापक्रम में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इस गर्माहट के कारण आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पिघलने से एवं आर्कटिक समुद्री भाग के तापमान के बढ़ने से वहां पर पाए जाने वाले समुद्री पक्षियों का बड़ी तेजी के साथ लोप हुआ है। विश्व के अनेक देशों में विभिन्न भूभागों पर आच्छादित वनों का बड़ी निर्ममता से कटान जारी है एवं पहले से घटकर 1/10 भाग रह गए हैं। धरती पर विलुप्त हो रहे विभिन्न प्रकार के वृक्ष एवं जीव जंतु इसका परिणाम है। भूमंडल के गर्माने से विश्व के अनेक भागों की वनस्पतियां लोप हो गई हैं। कुछ लोप होने के कगार पर हैं और कुछ संकटग्रस्त स्थिति में। इन वनस्पतियों में ठंडे स्थानों, पर्वतीय भूभागों की पर्वतीय चोटी पर उगने वाली वनस्पतियां पूरी तरह लोप हो चुकी हैं। विश्व के अनेक देशों में अब वन क्षेत्र घटकर 5, 10 एवं 2% ही रह गए हैं। वनों के लगातार कटान से प्राकृतिक वन क्षेत्रों के अतिक्रमण होने से धरती से अधिकांश कीमती लकड़ी और दवाइयों की वृक्ष प्रजातियां लोप हो गई हैं। एक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 9000 वृक्ष प्रजातियां पूरी तरह संकटग्रस्त हो चुकी हैं। विश्व संरक्षण केंद्र द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई। जैविक विविधता धरती पर केवल पेड़ पौधों एवं वन्य जीवों का ही संसार नहीं है, वरन इसमें अत्यंत सूक्ष्म पेड़ पौधों एवं जीवों का संसार भी शामिल है। इसमें पर्यावरण प्रणाली भी शामिल है, जो इन्हें एक सजीव पर्यावरण बनाने में सहयोग देता है। जब हम प्रकृति को नष्ट करते हैं, तो हम जैविक विविधता को नष्ट करते हैं। जैविक विविधता पर्यावरण प्रणाली को स्थिर रखती है, जैविक उत्पादन को बढ़ावा देती है। आज विश्व में चारों ओर जैविक विविधता को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वच्छ पानी के तालाब एवं झरने, सुंदर पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां, वनों में व्याप्त जीव जंतु एवं कीट पतंगे सब धीरे धीरे लोप हो रहे हैं। विश्व भर में आज चारों ओर प्रदूषण भयावह रूप से फैल रहा है और ओजोन परत का क्षीण होना एवं भूमंडल की गर्माहट का बढ़ जाना ऐसे कारण हैं जिनसे अवश्य ही धरती पर प्रलय आने के संकेत हैं। गत 100 वर्षों में गर्माहट बढ़ने से, वनों के कटने से एवं नव भूमियों के प्रदूषित होने से कई प्रकार की वनस्पति प्रजातियों एवं पशु पक्षियों का लोप हुआ है। इसके अतिरिक्त अम्लीय वर्षा या एसिड रेन से कई तालाब, नदियां एवं स्वच्छ जल स्रोत प्रदूषित होते जा रहे हैं, जिससे मछलियों के साथ साथ कई अन्य जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। जो रंग बिरंगी तितलियां हमें आनंद देती थी, आज वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तितलियों की आबादी घटने के प्रमुख कारणों में हवा में अनेक प्रकार के प्रदूषण एवं रसायनों का विषाक्त प्रभाव व DDT अन्य कीटनाशकों का घुल जाना भूमि को प्रदूषित कर रहा है। प्रशांत महासागरीय देशों में तितलियों की अच्छी खासी आबादी मिलती है। यहाँ तितलियों की 65 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें लाल, नीली, पीली और सफेद काफी ज्यादा लोकप्रिय है। संपूर्ण विश्व अनेक प्रकार के पक्षियों का स्वर्ग है, जिसके कारण धरती का जैविक सौंदर्य एवं प्राकृतिक स्वरूप आबाद है। इसमें पक्षियों का विचित्र संसार अपने आप में अनेक प्रकार के रहस्यों एवं प्राकृतिक आदतों व आवासीय क्षेत्रों की विविधता को समेटे हुए है, जिसमें एक विशेष प्रकार के पर्यावरण में इनका प्रजनन होता है और इनकी आबादी में वृद्धि होती है। विश्व में दुर्लभ पक्षियों का जीवन संकट में होने के प्रमुख कारण है। शिकारियों द्वारा इनका शिकार किया जाता है। वनों में आग लगने से, पेड़ों के कटान से इनकी आबादी में कमी आई है। सियार, भेड़ियों एवं दूसरे जंगली

0: जानवरों द्वारा इनके अंडों व बच्चों को खाने से काफी असर पड़ा है। इन पक्षियों के परंपरागत आवास एवं नवभूमि क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। आज पर्यावरण के जो हालात हैं वो हमसे छिपे नहीं हैं। हमें उनको लेकर सतर्क होना पड़ेगा। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम, पेड़ों के लगाने, जल स्रोतों को प्रदूषित न करने, कचरों को अलग अलग करके उनको डोर टू डोर सर्विस वालों को देने की आवश्यकता है।
1: दोस्तों, सुरक्षित पर्यावरण, बेहतर जीवन। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पर हमने सुनी है वार्ता। वार्ताकार थे समित खालिद। इसी के साथ ही आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
2: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
3: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
2: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन एक साथ गूंजती है,

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: दोस्तों ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं एक ऐसे करियर की जो न केवल उज्जवल भविष्य देता है बल्कि समाज सेवा का सबसे बड़ा माध्यम भी है, चिकित्सा का क्षेत्र। साथियों डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है क्योंकि वे जीवन बचाने का काम करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में करियर चुनना सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है और सेवा का मार्ग है। दोस्तों आज के समय में इस क्षेत्र में कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे MBBS डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और आयुर्वेद या होम्योपैथी विशेषज्ञ। हर भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है और समाज को स्वस्थ बनाने में योगदान देती है। साथियों चिकित्सा के क्षेत्र में आने के लिए मेहनत, धैर्य और समर्पण बहुत जरूरी है। नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से छात्र इस क्षेत्र में प्रवेश पाते हैं। पढ़ाई भले ही कठिन हो लेकिन इसका फल बेहद संतोषजनक होता है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत है सेवा और सम्मान। जब आप किसी मरीज को स्वस्थ होते देखते हैं तो जो खुशी और संतुष्टि मिलती है वह किसी और पेशे में मिलना मुश्किल है। साथ ही समाज में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को अत्यधिक सम्मान भी मिलता है। COVID-19 जैसी महामारी के दौरान हमने देखा कि कैसे हमारे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की। यही इस पेशे की असली पहचान है, मानवता की सेवा। तो दोस्तों अगर आपके अंदर लोगों की मदद करने का जज्बा है, कठिन परिश्रम करने का हौसला है और समाज के लिए कुछ करने का सपना है तो चिकित्सा का क्षेत्र आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आइए हम सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों का सम्मान करें। दोस्तों चर्चा तो जारी रहेगी, आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
4: सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सुनिए सुनिए सुनिए 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 बजे तक आकाशवाणी झांसी पर।

दोस्तों, ब्रेक के बाद अब हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण दिवस की, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के उद्देश्य के बारे में। साथियों, भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस

का मुख्य उद्देश्य है समाज में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को सम्मान देना और उनके प्रति जागरूक रहने और बेहतर चिकित्सा सेवाओं के महत्व को समझने का संदेश भी देता है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि डॉक्टर केवल एक पेशा नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का प्रतीक है। वे दिन रात मेहनत करके लोगों की जान बचाते हैं और समाज को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, इस दिन का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार बनाना, जैसे समय समय पर जांच कराना, स्वच्छता बनाए रखना और संतुलित जीवन शैली अपनाना। दोस्तों, कोविड-19 जैसी महामारी ने हमें यह सिखाया है कि हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी सच्चे योद्धा हैं। उनका सम्मान करना और उनके प्रति विश्वास बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। तो आइए इस राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर हम संकल्प लें कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे। दोस्तों, चर्चा तो हमारी जारी रहेगी, आइए सुनते हमारे कार्यक्रम का ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मुन्ना भाई MBBS से और आवाज है गीतकार हैं फरहाद राहत इंदौरी।

0: চেক চেক
1: তোমার নাম কি বলো তো
2: দসু না তোমার নাম তো দসু
3: আমার নাম
0: সদা নাম মুন্না ভাই
4: दोस्तों फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस से फरहाद राहत इंदौरी की आवाज में हमने सुना है बहुत प्यारा सा गीत। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकल्प की जो हमारे आज को भी संवारता है और आने वाले कल को भी सुरक्षित बनाता है। युवा शक्ति का संकल्प हरे धरा सुंदर कल। दोस्तों युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। उनकी ऊर्जा, उनके विचार और उनका जोश समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। आज जब पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं, तब युवाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों एक हरित और स्वच्छ धरती का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम सभी मिलकर इसके लिए प्रयास करें और इस बदलाव की शुरुआत युवा पीढ़ी से ही होती है। छोटे छोटे कदम जैसे पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पानी और बिजली की बचत करना, ये सब मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों अगर हर युवा यह ठान ले कि वह अपने जीवन में पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा तो हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया हरी भरी और सुंदर बन सकती है। याद रखिए प्रकृति हमें जीवन देती है और उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए आज हम सभी मिलकर यह संकल्प लें, हम अपनी धरती को हरित बनाएंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे और एक सुंदर भविष्य का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों चर्चा तो हमारी जारी रहेगी, आइए सुनते हमारे कार्यक्रम का ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म सिर्फ तुमसे और आवाज है उदित नारायण की।

दोस्तों फिल्म सिर्फ तुमसे उदित नारायण की आवाज में हमने सुना ये बहुत प्यारा सा गीत। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो जल्दी से उठा लीजिए पेन पेपर और नोट कीजिए हमारे कार्यक्रम का पता, ताकि आप अपने पत्र एवं सुझाव हम तक आसानी से पहुंचा सकें। हमारे कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी कानपुर रोड झांसी। हमारा पिन कोड है 284128। इसी के साथ ही अब दीजिए अपने दोस्त रोहित कुमार को कार्यक्रम युववाणी से इजाजत। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी एफएम 103 पर। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं का प्रिय कार्यक्रम नारी जगत।

0: नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को पल्लवी वर्मा का नमस्कार। बहनों, हर बार की तरह हम फिर हाजिर हैं लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम, जिसमें होती हैं ढेर सारी जानकारियां और पसंदीदा गीत संगीत। तो चलिए जल्दी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं डॉक्टर्स डे के बारे में। जी हाँ श्रोता बहनों, हर वर्ष 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर ही है जिनको हम भगवान की दुआ के साथ दवा के लिए याद करते हैं और भगवान का दूसरा रूप समझते हैं। यह दिन हमारे लिए डॉक्टरों की सेवा, कौशल और करुणा के लिए उन्हें धन्यवाद देने का एक अवसर है, क्योंकि एक स्वस्थ समाज के निर्माण में डॉक्टर्स का सबसे अहम योगदान होता है। और आज इसी अहमियत को समझने के लिए सुनते हैं इस परिचर्चा को, जिसमें हमारी साथी अल्पना जी ने बातचीत की है और प्रस्तुत करता है श्रीमती अंजलि कुमारी जी।
1: हमारे जीवन में एक कुशल डॉक्टर की अहम भूमिका होती है। उन्हें ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता है, जो हमारी रक्षा करते हैं। जब हम बीमार होते हैं या किसी दुर्घटना में घायल या किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं, जब डॉक्टर ही होते हैं जो हमारी बीमारी का इलाज कर हमें स्वस्थ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसार में डॉक्टर ही एक ऐसा इंसान है जिसे मरीज आस भरी नजरों से देखता है, जैसे वो भगवान से प्रार्थना कर रहा हो। डॉक्टर यानी चिकित्सकों के कार्य और स्वास्थ्य सेवा में उनको सम्मान करने के लिए हमारे देश में 1 जुलाई का दिन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और ये खास दिन भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद राय के जन्मदिन पर उनके समर्पण और मानवता के प्रति त्याग को सम्मान देने के लिए स्मरण किया जाता है। सबसे पहले सभी डॉक्टर्स को आकाशवाणी झांसी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, इस अवसर पर आज एक परिचर्चा आयोजित की गई है, स्वस्थ समाज के निर्माण में उचित चिकित्सा का महत्व एवं चिकित्सक की भूमिका। इस अवसर पर आए हुए अतिथि डॉक्टर्स से मैं आपका परिचय करा दूं। आप हैं डॉक्टर सुधाकर पांडे जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी। आप हैं डॉक्टर शिवांक राठौर, नेत्र रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर हेमा जयशोभने जी, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ। आप महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में प्रसूति एवं स्त्री रोग की विभाग अध्यक्ष हैं। डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल सुनैना सूद, MBBS DNB मनोचिकित्सा, भारतीय सेना में 14 साल आपने सेवाएं दी हैं और कार्यक्रम का संचालन कर रही हूं मैं अल्पना श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और आइए बात करते हैं डॉक्टर सुधाकर पांडे जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। चीफ मेडिकल ऑफिसर होने के कारण आपका दायित्व पूरे झांसी जिले के प्रति होता है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति या मरीज तक पहुंचे, इसके लिए आपके क्या प्रयास होते हैं?
2: झांसी जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छे रूप से संचालित हो रही हैं। हमारे जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, हमारी 12 CSCs हैं और 36 PSCs हैं, और साथ ही साथ हमारे पास हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, जिनको अभी हम आयुष्मान आरोग्य मंत्री के रूप में जान रहे हैं। वो हमारे जिले में 270 हैं। तो इन सभी जगहों पर हमारे ट्रेन्ड स्टाफ तैनात हैं। हम बूढ़े से लेकर के बच्चों तक के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे पास योजनाएं हैं। अब खासकर हमारा हेल्थ मिशन जो है, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन, वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए ज्यादा ध्यान देता है। महिलाओं में जननी सुरक्षा योजना है, जब भी गर्भवती महिलाएं आती हैं तो वो गर्भ पूर्व हम 4 जांचें करते हैं और उसमें साथ साथ हीमोग्लोबिन की जांच और अन्य तत्व की जांचें करते हैं, जिससे कि प्रसव सुरक्षित हो सके। इसमें हमारा सहयोग मेडिकल कॉलेज देता है, CSC से पेशेंट रिफर होता है, मेडिकल कॉलेज तक आता है और सुरक्षित हम प्रसव कराया जाता है।
1: और आइए बात करते हैं नेत्रों की, जिनसे हम सारी दुनिया देखते हैं। शरीर का सबसे कोमल अंग आंखें होती हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी

0: जरूरी होती है। तो डॉक्टर शिवांग जी आपसे जानना चाहेंगे कि बदलते मौसम में सबसे ज्यादा असर आंखों पर ही पड़ता है, कभी लाल हो जाती है, कभी हमें धुंधला दिखने लगता है, तो हम इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है और क्या कारण होता है इसका?
1: नमस्कार जी। जिस तरीके के आपने बताया कि मौसम के बदलाव के अनुसार आंख में लालीपन आना, खुजली होना, आंख में आंसू आने लगता है, कई लोगों को गड़न होती है, खुजली की समस्या पैदा होती है,
0: ये आम परेशानियां होती हैं।
1: बेसिकली आम परेशानी है जिसके कारण जैसे संसार में बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्शन होते हैं, तो इनके कारण ये आंखों में भी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। इससे बचाव के लिए ये है कि अपने आंख को गंदे हाथ ना लगाएं। गंदे हाथ लगाने की वजह से बीमारियां फैलती हैं, एक आंख से दूसरी आंख में भी फैल जाती हैं।
0: सफाई का ध्यान रखें।
1: सफाई का बेसिकली ध्यान रखना है, एक लोग से दूसरे लोग को भी फैल सकता है ये रोग। तो प्रमुख रोकने के लिए ये है कि आंख को कम से कम छुएं। कुछ लगता है कि आंख में प्रॉब्लम हो रहा है तो साबुन से हाथ धो के आंख टच कर सकते हैं, वैसे पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो आंखों को ना छुएं, ये आंखों का बचाव है।
0: जी हाँ।
1: इसके बावजूद भी अगर इन्फेक्शन हो जाते हैं, आंख लाल हो जाती है मौसम के चेंज के अनुसार, तो आप निकटती डॉक्टर जो आपके हैं आंखों के उनसे संपर्क करें,
0: डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। जी हाँ। महिलाएं यानी आधी आबादी, घर और बाहर की जिम्मेदारी निभाती हुई आज की नारी, इस भागम दौड़ और बदलते परिवेश में महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं, जिनमें ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जैसी जटिल बीमारियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर शोभने जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कारण है इसका और इनसे कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है।
2: आप सभी को नमस्कार, और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतने अच्छे कारण के लिए हम सभी को यहाँ बुलाया है। जैसा कि यहाँ की बुंदेलखंड की सारी माताएं बहनें, उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि आप परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं या नींव हैं आप परिवार की, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि महिला का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने परिवार को अच्छे से देख सके और वो अपनी मैक्सिमम वर्किंग प्रोडक्टिविटी अपने समाज को भी दे सके। तो इसके लिए जरूरी है, जैसा कि आपने कहा, सर्वाइकल कैंसर, बच्चादानी के मुंह का कैंसर। तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया में करीब 2.5 मिलियन आबादी है फीमेल कैंसर्स की
0: जी।
2: और हर साल करीब 8 लाख नए केसेस आते हैं और 4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।
0: बताइए, बहुत भयावह स्थिति है।
2: यस। और मतलब इतनी तादाद में कैंसर के महिला कैंसर्स आती हैं कि उनको हॉस्पिटल एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बीमारी का जो अनुपात है उससे काफी कम है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बच्चादानी के मुंह का जो कैंसर है उसका बचाव बहुत अच्छे से हो जाता है। इसका जो प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, ये 99% तक सार्थक है। और इसमें हमें सबसे पहले जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, 8 से 14 साल की जो बेटियां हैं घरों में, उनको सिर्फ 1 या 2 टीके लगाने से हम इनको पूर्ण सुरक्षा दे सकते हैं।
0: बेटियों को कितने उम्र तक में ये टीके लगवाना चाहिए?
2: ये उनको 9 से 14 साल की उम्र में 2 टीके लग जाएं। 2 नहीं लग पाए तो कम से कम 1 टीका तो लग ही जाए, ये तो पहली बात। दूसरी बात है कि जो इस उसमें छूट जाते हैं उनको 3 टीकों की जरूरत होती है और ये 3 टीके हम लोग 45 साल तक लगवा सकते हैं
0: जी।
2: दूसरी बात यह है कि स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है। कोई भी महिला यदि उसको सफेद पानी आ रहा है, पेड़ों में दर्द है, पेशाब करने में जलन है, या बहुत कष्ट से पेशाब हो रही है, या उनको लग रहा है कि उनके पेट में मतलब अचानक बढ़ने लग गया है, या पेट में कुछ उनको कुछ ऐसे महसूस हो रहा है कि कोई ट्यूमर वगैरह उनको ऐसे महसूस हो रहा है, या उनको कोई खाने की समस्या है, या भूख कम हो गई है, तो या उनका मतलब
0: जैसे ही उनको कुछ लक्षण दिखते हैं तो तुरंत ही यदि हम डॉक्टर के पास जाएं तो उसका निराकरण जल्दी हो सकता
2: ये
0: है।
2: मतलब ऐसी महिलाओं को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और यदि लक्षण नहीं है तो कम से कम 2 बार लाइफ में स्क्रीनिंग होनी बहुत जरूरी है,
0: जिससे पता चल सकता है।
2: 30 से 35 साल में, 40 से 45 साल में, इस तरह से यदि स्क्रीनिंग होती है मिनिमम, तो हम मैक्सिमम केसेस को पिकअप कर लेंगे कैंसर के पहले, और उसमें हमारा ट्रीटमेंट आसान होगा। और ये जो भयावह जो एक स्थिति
0: जो
2: आती है कि अक्सर पेशेंट स्टेज 3 स्टेज 4 में डायग्नोस होते हैं, उनका डायग्नोसिस या तो हम प्री मैलिग्नेंसी में कैंसर बनने से पहले डायग्नोस कर लेंगे, या फिर हम स्टेज 1 में डायग्नोस कर लेंगे, तो कम से कम वो पूर्ण रूप से ठीक हो पाएंगी और कैंसर से उनका समाधान मतलब उनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो उनको मिल पाएगा।
0: डॉक्टर सुनैना सूद जी, आजकल मानसिक परेशानियां, अवसाद, शीघ्र सब कुछ पा लेने की कोशिश, मनचाहना मिलने पर तनाव आम परेशानियां हैं। आपके पास जिस तरह के रोगी आते होंगे, तब आप इन समस्याओं का किस तरह से निराकरण करती हैं?
3: ओके, बेसिकली आजकल वर्ल्ड में बहुत कॉम्पिटिशन है, हर फील्ड में

0: कॉम्पिटिशन है, एंड डेफिनेटली आज की जो जनरेशन है वो अच्छे से अच्छा अपना परफॉर्मेंस करना चाहती है, इसी कारण से बहुत स्ट्रेस में भी रहती है. पर अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्ट्रेस हमेशा जरूरी होता है परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमल हो इसके लिए. अगर स्ट्रेस कम रहेगा, अगर हमें ये पता है कि हमारे बच्चे को पता है कि हमारा एग्जाम ही नहीं है, एग्जाम का स्ट्रेस ही नहीं है, तो वो पढ़ाई नहीं करेगा.
1: ये भी बात होती है.
0: मान लीजिए कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है कि परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है. तो एक ऑप्टिमल लेवल का जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी,
1: एक सामान्य स्थिति,
0: सामान्य जो लेवल का स्ट्रेस और एंग्जाइटी, वो बहुत जरूरी है आपकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए. पर मान लीजिए कि ऑप्टिमल अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो रेजिलियंस पावर है इंडिविजुअल का, मतलब कि जो आमतौर से डेली की जो परिस्थितियां हैं उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद काउंसलिंग से ही फर्क पड़ जाए, या हो सकता है कि कोई गंभीर बीमारी हो, साइकोलॉजिकल वैल्यूएशन करे तो वो समय पे पकड़ में आ जाए. तो डेफिनेटली अगर कोई ऐसी बात है कि बच्चा है या बड़ा है जो जितनी जरूरत है उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो बैक ऑफ द माइंड में क्या है या क्या दिक्कतें आ रही है, उसके लिए इवैल्यूएशन काउंसलिंग बहुत जरूरी है. एंड जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ऐसा तो नहीं है कि ये अवसाद हो या ये कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, तो उस हिसाब से उनका फिर मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट किया जाता है.
1: जी, दवाइयों से भी ठीक हो सकते हैं.
0: बिल्कुल.
1: स्वस्थ भारत के निर्माण हेतु समर्पित अपनी सेवाओं के माध्यम से समाज को उत्तम स्वास्थ्य देने के लिए दृढ़ संकल्प चिकित्सक में ही वो शक्ति होती है कि मरीज भी जीवन से प्यार करने लगता है और शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है. डॉक्टर सुधाकर पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे गंभीर बीमारियों से प्रभावित मरीजों के लिए जिला स्तर पर क्या क्या सुविधाएं हैं और उनका लाभ मरीज किस प्रकार से उठा सकते हैं.
2: जी, हमारे जिला स्तरीय अस्पतालों में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं. खासकर हमारे जिला अस्पताल में सीटी स्कैन सेंटर लग गया है जिसमें रोज 100 मरीजों के आसपास सीटी स्कैनिंग होती है.
1: बहुत अच्छी बात है.
2: गंभीर बीमारियों का उससे इलाज हो पाता है. अल्ट्रासाउंड मशीन संचालित है और हमारे सभी स्पेशलिस्ट जिला अस्पताल में कार्यरत हैं. जिस तरह से सर्जरी के अच्छे डॉक्टर्स हैं, सर्जरी डिफरेंट तरह की सर्जरीज होती हैं. हमारे यहाँ नेत्र रोग विशेषज्ञ काफी अच्छी तरह से काम करते हैं. अभी हम पिछले 2-3 वर्षों से सबसे ज्यादा ऑपरेशन नेत्र का ऑपरेशन कर रहे हैं. आंता निवारण एक प्रोग्राम चलता है जिसमें कटरेक्ट के ऑपरेशन होते हैं. मैक्सिमम कटरेक्ट ऑपरेशन हमारा जिला अस्पताल कर रहा है. साथ ही साथ हमारे यहाँ ENT सर्जन भी है. नाक कान गले की जो भी परेशानियां होती हैं उसको देखते हैं. मेरे महिला अस्पताल में निःशुल्क डिलीवरी होती है, सीजरियन ऑपरेशन होते हैं. वहां भी छोटे छोटे बच्चों को भर्ती करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं और बहुत ही क्रिटिकल केयर यूनिट है. जो छोटा बच्चा अगर किसी तरह से बीमार है तो उसके इलाज के लिए वहां सुविधाएं उपलब्ध हैं. तो इस तरह से देखा जाए तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज हमारे अस्पताल में ना चल सके. क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं रूट लेवल में फैल चुकी हैं, हम आशाओं के माध्यम से हम गांव-गांव में चले गए हुए हैं, तो छोटी छोटी बीमारियों को हम अपने रूट लेवल पे ही देख लेते हैं. बड़ी बीमारियों के लिए हमारे जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पेशेंट आते हैं जिनका बखूबी इलाज हो रहा है.
1: तो यदि उनको कोई गंभीर बीमारी है तो जो संभव हो सकता है यहाँ स्थानीय रूप से, तो वहां इलाज हो जाता है, नहीं तो उनको फिर और भी बड़े अस्पताल में भेजा जा सकता है.
2: आवश्यकता पड़ने पर जरूरत होती है हम बड़े अस्पताल में रिफर करते हैं.
1: डॉक्टर शिवांग जी, नेत्र संबंधी कई बीमारियां हैं और मरीज इसका कैसे इलाज कराएं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं?
3: देखिए, आंखों में देखा जाए तो 400+ बीमारियां हैं
1: जी.
3: लोगों को जिसके लिए जागरूकता बिल्कुल नहीं है. अभी तो मान के चलिए जो आंख के 4 भाग होते हैं, आंख का जो सामने वाला भाग होता है जिसको काली पुतली कहते हैं, कॉर्निया, उसकी भी कई बीमारियां होती हैं जिसका लोगों को पता नहीं लग पाता और वो धीरे धीरे बढ़ के रोशनी कम करती जाती हैं. साथ में आंख में मोतियाबिंद की भी एक प्रमुख बीमारी है.
1: ये एक आम बीमारी है.
3: जो आम बीमारी है जो सीनियर के छोटे कम उम्र के लोगों को भी ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है.
1: जी हाँ.
3: बेसिकली जो शुगर और बीपी के पेशेंट्स हैं उनको भी कैटरेक्ट जल्दी अर्ली एज में डिटेक्ट होने चालू हो गए हैं. साथ ही में आंख का जो पर्दा होता है और आंख की नस, इसकी सिरे भी कई रिलेटेड बीमारियां हैं जो शुगर और बीपी के पेशेंट्स को हो जाती हैं. तो कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी हो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आंख में कोई दिक्कत है तो तुरंत ही उसका इलाज कराएं, नहीं तो वो बीमारी बड़ी बन जाती है और रोशनी को भी कम कर सकती है आंख में. जो भी आपकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं आपके आसपास जितनी भी हैं, अगर कोई समस्या लगे तो तुरंत ही चिकित्सक से संपर्क
1: परामर्श करके अपना आंखों का इलाज करवाएं और वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर हेमा जी, महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं होती हैं, जैसे खून की कमी, माहवारी में अनियमितता, गर्भपात, गर्भधारण में परेशानी, तो स्वास्थ्य लाभ में दवाएं तो हमेशा

0: जरूरी होती ही हैं, लेकिन डॉक्टर के प्रति विश्वास भी चमत्कार करता है। तो आपके पास इस तरह के मरीज आते होंगे, यदि इस तरह कोई आपके पास अनुभव हो तो जरूर बताइए।
1: बिल्कुल, अक्सर जो महिलाएं जो खून की कमी से प्रभावित हैं, या उनको माहवारी में कोई दिक्कत है, या गर्भपात हो रहा, या बच्चे नहीं आ रहे, या कोई और समस्या है गायनी से रिलेटेड, तो ऐसी महिलाएं जब आती हैं तो एक बॉन्ड बनता है पेशेंट का और डॉक्टर का। ये बड़ा यूनिक बॉन्ड होता है,
0: विश्वास का।
1: हाँ, ये वैसा ही बॉन्ड होता है जैसे कि हमारे परिवार में आपस में फैमिली मेंबर्स का बॉन्ड होता है।
0: कई बार तो मरीज आते हैं डॉक्टर के सामने और वो देखकर ही ठीक हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है।
1: तो जितना गहरा ये बॉन्ड होगा और जितना विश्वास पेशेंट का अपने डॉक्टर पर होगा, तो वो अपने एक एक प्रॉब्लम आपको बता पाएगा। तो आप उसको 100% आप उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे। और शारीरिक प्रॉब्लम तो आप ठीक करेंगे ही, जैसे कि खून की कमी है तो आप उसके खून के लेवल को तो बढ़ाएंगे ही, इन्फेक्शन है तो आप इन्फेक्शन को तो दूर करेंगे ही एंटीबायोटिक से, ठीक। लेकिन आप उसके साथ साथ उसको मानसिक रूप से भी आप उसको एक हौसला अफजाई उसको देंगे, ताकि वो ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखे और ट्रीटमेंट पूरा करे। यदि वो डॉक्टर से डर जाती है या वो जिस जगह जाती है उसको वो होमली नहीं लगता वो प्लेस, तो ऐसे में क्या होगा कि वो ट्रीटमेंट ब्रेकअप कर देगी या दोबारा वहां नहीं जाना चाहेगी। तो अक्सर ऐसे ही मतलब पेशेंट्स जो होते हैं वो ट्रीटमेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो सफर करते रहते हैं। तो ये बॉन्डिंग बहुत जरूरी है और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपने पेशेंट को बिल्कुल एक होमली एटमॉस्फेयर दें, ताकि वो खुलकर अपनी परेशानियों को बता सके और हम उसका अच्छे से इलाज कर सकें।
0: बिल्कुल, बड़ों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी अवसाद तनाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस स्थिति में आप किस तरह से अपने मरीजों का इलाज करती हैं?
2: बेसिकली आजकल स्पेशली जब कोरोना टाइम आया तो बच्चों को मोबाइल देने पड़ गए, और लेकिन अब उनसे मोबाइल वापस नहीं लिए जा पा रहे हैं। अभी भी स्कूल में व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं जो बच्चे चेक करते हैं, नहीं भी आने पे बच्चे बहुत समय मोबाइल पे ही बिताते हैं। तो इससे जो बच्चों की ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब एक नॉर्मल रियल लाइफ में जो उनका इंटरेक्शन होना चाहिए आपस में, बड़ों से, आस पड़ोस के लोगों से,
0: क्योंकि उस समय जो बच्चे बड़े हुए हैं 2 या 3 साल के थे, तो उनका वो 2-3 साल का जो पीरियड था वो घर के अंदर ही निकला, पढ़ाई भी उनकी मोबाइल पे शुरू हुई है, खेल भी उनके उसी पे शुरू हुए, इसका असर पड़ा।
2: हाँ, स्कूल पूरा उनका जो पीयर ग्रुप जो बनना चाहिए था
0: वो नहीं,
2: उनका जो रूटीन बनना था नहीं बन पाया। जैसे ही बड़े बच्चे हैं जो आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं, मतलब उनके दोस्त भी हैं तो वो सोशल मीडिया पे दोस्त हैं, असली में दोस्त नहीं है उनके, उनको पता ही नहीं है कि इंटरेक्ट कैसे
0: बात करनी है,
2: इंटर रिलेशनशिप कैसे उनपे वर्कआउट करना, उनको पता ही नहीं है। तो हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा सफर कर रही है। इसके अलावा बैठे बैठे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो रहा है, कोई गेम्स नहीं है बच्चों के, कोई एक्टिविटी नहीं है, ओबेसिटी हो रही है, बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। अगर 3 घंटे या उससे ज्यादा बच्चा टेक्नोलॉजी में टाइम स्पेंड करता है तो उसको ऑलरेडी टेक्नोलॉजी एडिक्शन है, और ये अब उसके व्यक्तित्व पे प्रभाव डालने लगा है बहुत बुरा। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चों को एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, बच्चों का पढ़ाई में,
0: उन्हें दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति भी पसंद नहीं आती है।
2: हाँ जी बिल्कुल, मतलब क्यों मुझे आके कमरे में देखते हैं, क्यों चेक करते हैं, क्यों मुझसे मांगते हैं,
0: किसी का टोकना बोलना भी पसंद नहीं आता
2: नहीं। और अगर मोबाइल किसी कारण से ले लिया जाए तो बच्चे और गुस्से से, और कई बच्चे ऐसे मोबाइल भी तोड़ दिया है, जिद्दी भी हो गए। तो बेसिकली आजकल के बच्चों का जो बेसिक प्रॉब्लम है ना वो टेक्नोलॉजी एडिक्शन है बहुत ज्यादा। इसकी वजह से बहुत ज्यादा पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है बहुत हैम्पर हो रहे हैं बच्चों के, उनका इंटरेक्शन आपस में, उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा सफर कर रही है। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं डेफिनेटली, और सबसे पहले मैं उनको यही कहती हूँ कि आपको उनका मोबाइल रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, फिर डेफिनेटली काउंसलिंग करके और मेडिसिन देके इस तरीके से इलाज करने की कोशिश की जाती है। फैमिलीज को भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, लेकिन मतलब ग्रेजुअली ग्रेजुअली डेफिनेटली असर,
0: डॉक्टर के साथ साथ परिवार का पूरा सहयोग होना बहुत जरूरी है कि बच्चे इस स्थिति से निकल आए। डॉक्टर सुधाकर पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो शहर में मलेरिया, डेंगू, डायरिया, मौसमी इस तरह की बीमारियां फैलती हैं, और ऐसी स्थिति में हमारी झांसी स्वस्थ रहे, इसके लिए आप क्या संदेश देंगे?
3: जैसे जब मौसम चेंज होता है तो तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। खासकर हमारी सरकार संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाती है, साल भर में 3 बार हम नियंत्रण अभियान चलाते हैं। अभी हम 1 जुलाई से 31 जुलाई तक नियंत्रण अभियान चलाना है, और इसी दौरान दस्तक अभियान भी चलता है जिसमें हमारी आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर के दरवाजे को नॉक करती हैं और पूछती हैं कि आपके घर में कोई बुखार से पीड़ित तो मरीज नहीं है
0: जी,
3: आपके घर में कोई और भी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, आपके घर में प्रेग्नेंट वुमेन तो नहीं है, तो इस तरह से
0: सर्वे किया जाता है,
3: के बारे में सर्वे किया जाता है
0: जी।

0: इस तरह से जब सर्वे में कुछ निकल के आता है बुखार से पीड़ित है तो हम उनका इलाज जांच कराते हैं। अगर डेंगू हो गया या चिकनगुनिया हो गई या मलेरिया हो, किस तरह से भी, इन सबकी किट्स हमारे आशाओं के पास उपलब्ध है, एएनएम के पास उपलब्ध है। हम गांव-गांव में सारी किटों से जांच करते हैं। अगर संभावित कोई बीमारी पता चलता है तो उसको हम जिला स्तरीय अस्पतालों में ले आते हैं और कन्फर्मेटरी जांच करा करके उसका निदान,
1: घर घर जाकर इस बात का सर्वे भी किया जाता है कि इस तरह की यदि कोई बीमारियां फैल रही हैं,
0: जुलाई महीना पूरा
1: तो उनका निदान किया जाता है,
0: सर्वे किया जाएगा पूरे एरिया में और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। नगर निगम भी काम करता है और पशु भी सुरक्षित रहे, पशुओं की वजह से कोई बीमारी हमारे बच्चों में हो उनका भी हम ध्यान रखते हैं।
1: जी।
0: तो कई विभाग जो एक साथ मिलकर के इस संचारी रोग नियंत्रण अभियान में काम करते हैं और पिछले कई वर्षों से हम इस पर नियंत्रण प्राप्त कर चुके हैं। दिन पर दिन हमारे यहाँ इस संचारी रोग बीमारियों की संख्या कम होती जा रही है।
1: सुनैना सूद जी, विशेष आहार द्वारा या अन्य तरह से मानसिक रोग ठीक किया जा सकता है क्या? काउंसलिंग या थेरेपी किस तरह से असर करती है?
2: बेसिकली एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें कि आपका नियम से सुबह के उठना, अपने ऊपर थोड़ा समय निकाल के एक्सरसाइज करना या कम से कम वॉक कर लेना, कुछ योगा मेडिटेशन करना, समय पे आहार लेते रहना, नाश्ता समय पे, खाना समय पे, फिर आपको ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल आहार चाहिए लेकिन एक बैलेंस डाइट चाहिए जिसमें कि आपको एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट्स हैं उनकी मात्रा जितनी आवश्यक है उतनी हो। जैसे खाना खा रहे हैं तो उसमें दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, दही, ये चीजें सब होनी चाहिए। फल खाना भी बहुत जरूरी होता है। आमतौर से लोग सलाद, फल अक्सर नहीं भी खाते हैं, नियम से नहीं खाते हैं, बहुत चाय कॉफी पीते हैं, तो इसके लिए हम मना करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है।
1: एक डॉक्टर दूसरों की पीड़ा को खत्म करता है और वो मरीजों को रोगों से बचाता है। एक अच्छा डॉक्टर मानवता का दर्द भी अनुभव करता है। जीवन को प्यार करना और शरीर को सेहतमंद बनाए रखना एक डॉक्टर ही सिखा सकता है। डॉक्टर्स डे के अवसर पर आप सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर विशेष परिचर्चा अभी आप सुन रहे थे, स्वस्थ समाज के निर्माण में उचित चिकित्सा का महत्व एवं चिकित्सक की भूमिका। परिचर्चा में भाग ले रहे थे मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी डॉक्टर सुधाकर पांडे, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवांक राठौर, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज डॉक्टर हेमा जयशोक ने, मानसिक रोगी चिकित्सक डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल सुनैना सूद। कार्यक्रम का संचालन किया अल्पना श्रीवास्तव ने। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी।
3: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
4: पर कुछ धुने कभी पुरानी नहीं होती।
5: लग जा गले के फिर हसी रात।
3: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीते कल की मिठास और आज की धड़कन एक साथ गूंजती है।

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: बहनों 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हम सब वन महोत्सव वीक सेलिब्रेट करते हैं और ये तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ों का हमारे जीवन में और पर्यावरण में कितना अहम योगदान होता है। पर कभी कभी जाने अनजाने कई बार हमारी ही गलती और जरूरतों की वजह से हम पेड़ों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। पर यह वक्त है अपनी गलतियों को सुधारने का और ढेर सारे पेड़ पौधों को लगाने का। तो जिस तरह से हम अपने बच्चों को ड्रॉइंग और क्राफ्ट के रूप में फैमिली ट्री बनाना सिखाते हैं, ठीक वैसे ही उसे अपने जीवन में सच में बनाएं और इस बार कोशिश करें कि अपने परिवार के हर सदस्य के नाम से एक पेड़ जरूर लगाएं, ताकि हम सभी का रियल फैमिली ट्री बन जाए और हम सभी पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण में अपना अहम योगदान भी दे सकें और इस वन महोत्सव को सफल बना सकें। तो ये तो बात हुई वन महोत्सव के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला गीत संगीत का, तो आइए सुनते हैं फिल्म साजन बिना सुहागन से इस गीत को।

0: मधुबन खुशबू देता है।
1: श्रोता बहनों, इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा अपने पत्रों द्वारा लिखकर जरूर बताइएगा। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम नारी जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी झांसी, पिन कोड है 284128। इसी के साथ मुझे यानी पल्लवी वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना प्रिय कार्यक्रम नारी जगत एफएम 103 पर। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का लोकप्रिय कार्यक्रम चौपाल।

0: किसान भैया।
1: किसान माणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी अपने जो भैया देखो चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहन खो विपिन भैया की नमस्कार। तो देखो भैया जैसे अपने संजय भी नहीं है भाई अपन आगे अपनो कार्यक्रम लेके तो का हो थे भैया के देखो जैसे अपने आजकल देख रहे आज है देखो अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस और इको महात्मा किसान भैया सब जानते हैं कि देखो अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस को महत्व है। महत्व इको लाने का है कि अपन साझा करा थे एक लोगों को दूसरे में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करवो है और कहा है कि फलों को भैया सेवन से अपन जाना था बढ़ावा दे है एक दिन कहा है लोगों को एक दूसरे को साथ साझा करवो है प्रकृति के साथ और अनमोल आहार होते जो हमारे तो एक लान उपहार के रूप में भी हमारे भैया दे सका। तो ऐसे ही भैया देखो फलों का आदान प्रदान भी हमारे भैया ने करते हैं तो ऐसी बात होती है। फल हमारे का जीवन दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व होते हैं तो ऐसे भी अपने जीवन में उनको महत्व हमारे भैया बहन को रखने हैं और देखो चाहे हो कोनो प्रकार के फल हो तो इन बातों को भी हमारे किसान भैया बहन को बिल्कुल ध्यान रखने। अब बात आऊ के देखो के वन महोत्सव आप चल अपन देख रहे कि एक वृक्ष एक जीवन मतलब अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष तो ऐसा लगाओ के जो अपने आगे चल के भविष्य में ऊपर तो काम दे है और काम के संगे संगे बता के भी कि देखो जो भैया हमारे दादा या परदादा अपन लगा जाते हैं जैसे आम को पेड़ अपन ने देखो महुआ को पेड़ देखो जो बोले हमारे दादा लगा गए थे बहुत पुराना हो तो ऐसे ही अपन को भी अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष को ऐसा निर्माण लगाने हैं कि जो अपने आगे भविष्य में अपन के काम आवे। तो अपन देख रहे हैं कि जो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव चला थे इनमें भैया देखो सबसे ज्यादा वन विभाग के माध्यम से और कई प्रकार के संस्थान है जो ऐसे पेड़ पौधों को लगाओ जाए तो वन हमारे जीवन के लाने कितने महत्वपूर्ण है वो हमारे किसान भैया बहन बहुत जानते हैं। कैसे चाहे भैया देखो मानसून की बात हो चाहे कोनो प्रकार की समस्या हो इन सबसे निपटने के लाने वन चाहे हवा की बात हो तो इन सब में हर पौधा अपने आप में एक सक्षम सोई होता है। और बात आउ थे भैया देखो वन की बात तो कहने देखो ऐसी अपने देख रहे कि कृषि वानिकी में अपन देख रहे कि कई प्रकार के ऐसे पौधा भी अपने रखा है तो कहने उमदास एक बतका सुन लो जाए कृषि वानिकी की प्राकृतिक संरक्षण में भूमिका और इसका अपन खान जानकारी दे डॉक्टर प्रभात तिवारी सहायक प्राध्यापक जो रानी लक्ष्मी केंद्र की विश्वविद्यालय से और इस बतखाव कला संतोष पाल भैया। तो अपन सुने अपने किसान भैया बहन सुने
0: किसान भैया आरो नमस्कार। किसान भैया आरो अपने आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में आमंत्रित करत ऐसे कृषि वैज्ञानिक भैया हरण है जागरूक किसान भैया हरण है और डॉक्टर भैया हरण है भैयारो जो चल रहा चौमासी को मौसम और ई मौसम में देखो हर जगह हरियाली दिखाते कन्नी लगत कि ई मौसम में प्रकृति माता अपनो श्रृंगार करती जब हर जगह हरो भरो पेड़ पौधा लगावे की बात आती तो यही विषय पे चर्चा करवे के लाने हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर प्रभात तिवारी जी जो सहायक प्राध्यापक हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में कृषि वानिकी विभाग से आए हैं और इनसे आज चर्चा करत कृषि वानिकी जो प्रकृति माता के संरक्षण की बात आती है तो इनमें कृषि वानिकी की काकछु भूमिका होती। डॉक्टर प्रभात तिवारी जी आपका हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हम आपसे चर्चा करत कृषि वानिकी की प्रकृति संरक्षण में का भूमिका होती
2: जी दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वर्तमान परिवेश में प्रकृति संरक्षण की बात करना अत्यंत आवश्यक है और कृषि वानिकी इसमें निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।
0: पहली बात तो अब किसान भैया के दिमाग में ये आ रही हुई है कि प्रकृति संरक्षण का होती क्या है ऐसी क्यों जरूरी हो जाती प्रकृति संरक्षित करवो
2: जी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसा प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो प्रकृति का मतलब होता है कि जो हमारे आसपास का वातावरण है जो कुछ भी ईश्वर ने हम सबको दिया है चाहे वह जमीन है चाहे वह जल है चाहे वह जंगल है ये सब प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीजें हैं। तो प्रकृति द्वारा जब प्रदत्त चीजों का हम संरक्षण करते हैं क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश में औद्योगिकरण भी बहुत तेजी से चल रहा है
0: बिल्कुल
2: हम तरह तरह की फसलों का उत्पादन अपने मुनाफे के लिए अपने फायदे के लिए करते हैं तो हमने देखा कि समय के साथ बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है जैसा परिवर्तन इस परिवर्तन के बहुत सारे नुकसान सामने आए हैं। जैसे आप देखिए कि आप वर्षा जो है एक निश्चित सीमा में नहीं होती कई बार ऐसा देखने में आता है कि पूरे बारिश का मौसम चला जाता है और वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती। इसके अलावा जो है निरंतर वन क्षेत्र कम हो रहे हैं इसके अलावा हमारे जो प्रकृति के महत्वपूर्ण घटक हैं जीवाणु और जानवर वो भी निरंतर कम हो रहे हैं चाहे वह सूक्ष्म जीवाणु हो जो मृदा में पाए जाते हैं जो वातावरण में पाए जाते हैं इसके अलावा जो बड़े जानवर हैं जो पंछी हैं जो पशु

0: इन सबको जब हम अपना परिवार मानते हैं तो उसको हम संरक्षण करने की बात करते हैं। हम ऐसी प्रणाली अपनाते हैं कि जिससे कि ये सभी संरक्षित हो सकें और एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी सकारात्मक तरीके से एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे को बेनिफिट फायदे पहुंचाएं, इसके लिए प्रकृति संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक।
1: डॉक्टर प्रभात तिवारी, अब जैसे बात कर प्रकृति संरक्षण की घटकन की, तो ये बताओ अपने किसान भैया हैं कि ये मूलभूत घटक कौन कौन से होते हैं?
0: जी, जब हम घटक की बात करते हैं तो हमारे चारों ओर का वातावरण, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा पर्यावरण। पर्यावरण कई तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम बात करें अपने जमीन की, अपनी मिट्टी की। हम देख रहे हैं कि मिट्टी में भी अब जो वर्तमान समय में एक ही प्रकार की फसल लेने से ज्यादा कीटनाशकों का, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में निरंतर कमी हो रही है, तो जिससे कि किसान को दो तरफा नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो उसके फसल की पैदावार में भी कमी हो जा रही है, वहीं दूसरी ओर वो मिट्टी जो है वह उतनी उपजाऊ नहीं बनी, उसकी विषाक्तता की श्रेणी में वो मिट्टी आ चुकी है। कई जगह यह भी देखा गया है कि किसान ने क्या किया है कि एक ही फसल कई बार ले लेने से या उसको इस तरीके से परिवर्तित कर दिया है मिट्टी को कि उसके जो मृदा अपरदन, आपने शब्द सुना होगा कि मिट्टी धीरे धीरे रेत बनती जा रही है, क्योंकि मृदा का अपरदन बहुत तेजी से हो रहा है। उसकी जो ऊपरी लेयर है वह जल और वायु के प्रभाव से उड़के दूसरी ओर चली जा रही है। तो जब मिट्टी का अपरदन हो जाएगा, इसके अलावा जल जो महत्वपूर्ण घटक है, जल एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि जल के बिना बिन पानी सब सुन, हम सभी जानते हैं। तो पानी की भी हमको जो संरक्षण करना चाहिए उसका प्रयास हमने नहीं किया। जैसे आप जानते हैं बुंदेलखंड सूखा ग्रस्त क्षेत्र माना जाता है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी की बारिश नहीं, लेकिन आप गर्मियों के समय में देखेंगे कि पानी नहीं रहेगा, पीने तक की पानी की किल्लत हो जाती है। तो जल का हमने संरक्षण नहीं किया। तो जल, इसके अलावा हमारा जंगल, जंगल का संरक्षण करने की जो बात होती है, जमीन के संरक्षण करने की बात होती है, तो ये महत्वपूर्ण घटक है प्रकृति के, जिनको हमको अपने पर्यावरण, अपने वातावरण, अपने जल, अपने जंगल, अपने जमीन को किस तरीके से सकारात्मक प्रभाव से संरक्षित कर सकें, तो वो प्रकृति संरक्षण की श्रेणी में आता है।
1: बिल्कुल तिवारी जी, जैसे वन क्षेत्र होता है, यानी कि पेड़ पौधों का लगाना, यानी कि उसका विस्तार करना, तो ये वन क्षेत्र प्रकृति संरक्षण में का कछु योगदान दे सकते?
0: देखिए, वन तो बहुत तरीके से योगदान देते हैं और वन बहुत उपयोगी भी होते हैं। ऐसा है कि हमारी जो भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, राष्ट्रीय वन नीति है, वो राष्ट्रीय वन नीति कहती है कि हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% यानी लगभग एक तिहाई भाग वन क्षेत्र होना चाहिए, यानी जितनी जमीन है उसका एक तिहाई वन होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में हम अभी केवल 24% की श्रेणी में ही पहुंच पाए हैं, यानी अभी भी हमारा जो वन क्षेत्र है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% नहीं। वन अगर नहीं होगा तो उससे कई तरह की समस्याएं होंगी, जो अभी आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, ये जो क्लाइमेट इतना ज्यादा जलवायु परिवर्तन की समस्या से पूरा देश जूझ रहा है कि कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं बारिश हो ही नहीं रही है, कहीं गर्मियों में ठंडी पड़ती है, ठंडी में गर्मी पड़ती है, ये वास्तविक रूप से वन क्षेत्र की कमी होने से हो रहा है। तो वन अत्यंत आवश्यक है। वन रहने से पर्यावरण हमारा संरक्षित होगा, हमारा जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है वो नहीं होगी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो वन होता है वह बहुत सारे जीवों का एक घर का काम करता है, रेसिडेंस का काम करता है। तो जब जंगल होगा, पेड़ होगा, तो पक्षी उसमें घोंसला बनाएगा, पेड़ होगा तो जानवर उसमें आके अपना आश्रय देखेगा, पेड़ होगा तो जो मधुमक्खियों के लिए परागण की फैसिलिटी है वो होगी। तो ऐसे कई प्रकार के जीवाणुओं का, जीवों का घर है वन। तो वन न केवल छाया प्रदान करता है, पर्यावरण को संरक्षित करता है, साथ ही साथ कार्बन को अवशोषित करता है, वर्षा कराने में सहायक करता होता है, ये सारे फायदे तो हैं ही। इसके अलावा भी वन क्षेत्र जो है वह इनडायरेक्टली रूप से हमारे वाइल्ड लाइफ को, वन्य जीवों को संरक्षित करने का भी बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है। इसलिए हम सब बात करते हैं कि वनों को भी संरक्षित करना चाहिए, और वन संरक्षित होंगे तभी प्रकृति संरक्षित हो पाएगी।
1: बिल्कुल, वन और वन्य जीव, जो आपने पानी संरक्षण की बात की, तो ये सभी चीजें मिलकर ही प्रकृति में संतुलन बनाए रखती। प्रभात तिवारी जी, और एक बात बताओ कि जो वन क्षेत्र बढ़ावे के लाने किसान भैया आ रहे हैं, का कछु प्रयास करें कि जिसे जो वनन को विस्तार हुए।

0: और जब ज्यादा वन हुई हैं तो उनमें पशु पक्षी भी ज्यादा निवास करें, और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो पशु पक्षी मिलके और वन मिलके हैं तो वो अपने किसान के लाने सहयोगी हो जाते हैं।
1: जी, वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट यानी सरकार अपने स्तर पर भी प्रयास कर रही है, किसानों को चाहिए कि वो अपने स्तर पर भी प्रयास करें। जहां एक और जो सरकार है वह कई तरीके की योजनाओं के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता लाने का काम कर रही है, जैसे अभी अपने उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा एक पेड़ माँ के नाम का संकल्प कि माँ के नाम से हम एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो सरकार भी अपने स्तर पर इस पे जागरूकता लाने के लिए काम करती है। अभी आपने देखा होगा कि जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जितने भी हाईवे बन रहे हैं, उन सभी के बीच में जो डिवाइडर की जगह होती है उसमें वृक्ष लगाए जा रहे हैं, सड़क के दोनों ओर भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं।
0: क्या कोई ऐसी योजना है जिससे कि उन्हें कुछ आर्थिक मदद मिल सके?
1: आर्थिक मदद की जहां तक बात है तो अभी कई तरह के, जैसे कि अभी वन विभाग भी पेड़ किसान भाइयों को लगवाता है, कई तरह के औद्योगिक कृषि वानिकी के वृक्ष हैं जिसके लिए उद्योग किसानों से संपर्क करते हैं और पर्टिकुलर वृक्ष लगवा के किसानों से खरीदने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर वन वृक्षों की नर्सरी किसी को स्थापित करना है उसमें भी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा आने वाले समय में कार्बन क्रेडिट जैसी स्कीम भी आने वाली है जिसके तहत वो उसकी सैटेलाइट मैपिंग करके किसानों को उससे फायदा दिलाया जाएगा कि किस कितना कार्बन वो उसके पेड़ अवशोषित करते हैं। इस पे भी गवर्नमेंट स्तर पे काम चल रहा है। इसके लिए हमको क्रॉप रोटेशन यानी फसल विविधीकरण जैसी प्रक्रिया पे जाना पड़ेगा।
0: डॉक्टर प्रभात तिवारी जी, आप हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में आए और कृषि वानिकी की प्रकृति संरक्षण में भूमिका इस विषय पे विस्तार से जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भैया देखो, अबे अपन ने सुनो अमदास में जो बतकाव और बतकाव कर रहे थे भैया, देखो प्रभात तिवारी से संतोष पाल भैया, तो बिल्कुल हमारे किसान भैया ने बिल्कुल जाना था कि देखो अपन का भी बनन की अपने जीवन में कितनी महत्वता है, और इस विषय पे भी हमारे किसान भैया बिल्कुल जाना थे कि देखो अपने जीवन में अगर देखो बन है तो बिल्कुल सब कुछ हुए है। तो इसलिए हम आपसे भैया सब बनने से अपना जो कब हो रहा है कि अपन एक उमदास एक पेड़ जरूर लगाए, इस बात को भी हमारे किसान भैया बहन को बिल्कुल ध्यान रखना है। काश भैया अगर देखो अपन ने पौधा पेड़ अपन ने लगाओ तो अपनी लगाने में बहुत कुछ फायदा सोच गया रखे थे। तो भैया ने बताइए कि देखो अपनी प्रगति और अपनी संरक्षण करने हैं तो अपन को वृक्ष लगाबो बहुत जरूरी है। अब बताओ थे भैया कि देखो और भी बात का है, जैसे आप अपनी भैया के देख रहे हैं कि खरीफ को मौसम चल रहा हो और बुवाई को है, तो बुवाई से पहली सीढ़ी है भैया बीज, और बीज की उपलब्धता और शोधन सही तरीका से ये विषय पे कहानी अमदास बतकाव सुन लो जाए, और सही तरीका का है और ये विषय पर वैज्ञानिक है, सस वैज्ञानिक है जो अर्थिका सिंह और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से आई, और इनने भैया बतकाव करो दीपदीप से पेन ने, तो इनने कागज पूछो हमारे किसान भैया बहन भी सुने और अपन सुने।
3: किसान भाइयों और बहनहरों, खेती की सफलता की शुरुआत खेत में बीज डालने से पहले ही हो जाऊत है। अच्छी पैदावार के लाने गुणवत्तापूर्ण बीज को चयन, समय पर बीज की उपलब्धता और उचित कृषि साधनन को सही उपयोग बहुत जरूरी होता है। सही बीज और सही तकनीक अपना के किसान भैया कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकत है। आज हम यही महत्वपूर्ण विषय बुवाई की पहली सीढ़ी, बीज की उपलब्धता और साधनन को सही तरीका पर चर्चा करवे के लाने डॉक्टर अर्तिका सिंह जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से आई हैं, उनसे बातचीत करत हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब अपन को बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी झांसी के स्टूडियो में।
4: नमस्कार मैम, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और ताकि मैं हमारे किसान भाइयों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकूं और उनकी आय में वृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब अपन से हम जो जानबो चाहते हैं कि किसान भाइयों के लाने गुणवत्तापूर्ण बीज को का महत्व है।
4: तो किसान भाइयों, मैं वैज्ञानिक हूँ सस्य विज्ञान विभाग में विश्वविद्यालय में, और हम लगातार आप ही के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें बीज की, तो किसान भाइयों आपको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर एक कोई चीज जिससे आपकी आय वृद्धि 50% तक बढ़ सकती है तो वो है गुणवत्तापूर्ण बीज। जब आप बीज का चयन करें तो ऐसा नहीं है कि कोई भी दुकान से जाकर कोई भी बीज ले आए। आप सबसे पहले जो नेशनल सर्टिफाइड एजेंसीज हैं, हमारा विश्वविद्यालय है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ग्रासलैंड सबने देखा है, तो उसके पास में हमारा विश्वविद्यालय

0: तो वहां पर आके आप जब गुणवत्तापूर्ण बीज लेंगे तो हमारे यहाँ ऐसा बीज उपलब्ध होता है जिसकी पैदावार बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बजाय कि जो आप निजी कंपनी से जाके निजी दुकानों से जाकर लेते हैं। क्योंकि हर एक बीज का किसान भाई, जैसे हम दो लोगों को खड़ा कर दें, दोनों को 100 किलो की बोरी पकड़ा दे, तो एक पकड़ पाएगा और एक नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि एक में उतनी ताकत ही नहीं है कि वो 100 किलो की बोरी पकड़ पाए। तो ऐसा ही बीज में होता है कि मान लो आपको एक बीज आपको सरसों की 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देगा और एक जो हमारे विश्वविद्यालय से मिल रहा है हम बोलेंगे वो 25 क्विंटल देगा, तो अगर आप वह बीज अपने खेतों पर लगाएंगे तो जरूर आपको 1.5 गुना फायदा, 2 गुना फायदा जरूर होगा। तो आप गुणवत्तापूर्ण बीज जरूर लगाएं। ऐसा नहीं है कि आज हमने लगा दिया उसी में से, अगर आप ये करना चाहें कि आपने इस वर्ष खेती करी है, कुछ आपने बीज अपने पास रख रखा है अगले साल की बुवाई के लिए, तो आप अगले साल तक उसको कर सकते हैं उपयोग, मगर उसके बाद ना करें, उसके बाद नया ही बीज चुनकर लेकर आए। क्योंकि आप जब एक बीज को 2 या 3 साल से अधिक सालों तक लगाते हैं तो उसकी गुणवत्ता वैसे ही कम हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है किसान भाइयों बीजों का चयन करना और कहां से आप ले रहे हैं, जिसके लिए आप विश्वविद्यालय को भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे विश्वविद्यालय में आ सकते हैं, नेशनल सीड कॉरपोरेशन आपके आसपास हो सकते हैं, केवीकेस हो सकते हैं, वहां पे जाके आप इसको ले सकते हैं। तो आप ये मानिए कि सर्वप्रथम कोई भी आप खेती करने चले, आप अगर सोच रहे हैं कि हमें इसकी खेती करनी है, तो सर्वप्रथम आप ये डिसाइड करें कि बीज कितना लगाना है और बीज कौन सा लगाना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बुवाई से पहले किसान को बीज का चयन करते समय और किन किन बातों को ध्यान रखना है?
0: अगर मैं बात करना चाहूंगी किन किन बातों का, तो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है कि मान लो हमने एक जगह 10 बीज गिराए, तो हम क्या चाहेंगे कि वो 10 बीज अंकुरित हो जाएं,
1: बिल्कुल
0: 10 में से पेड़ आ जाएं और हमको पैदावार मिल जाए। तो पहला होता है उसका कि वो उसकी अंकुरण क्षमता क्या है। तो जिसकी अंकुरण क्षमता 99% 100% होता है वो आपको लिखा मिलता है, और जो अच्छी एजेंसीज या विश्वविद्यालय से लेते हैं तो उसका अंकुरण प्रतिशत हमेशा 99% रहता है। तो ऐसे बीज चुने। दूसरा क्या होता है कि हमारी जो फसल होती है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान रोगों से होता है, तो ऐसे जरूर बीज लें जो कि आपके रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जिनमें हो, और ऐसे भी बीज उपलब्ध होते हैं तो ऐसे बीज लें। तीसरे ऐसे बीज लें जिनमें कीटों का प्रकोप कम होता है, और चौथा जिनकी पैदावार अधिक होती है, ऐसे 4 गुणवत्तायुक्त बीजों का चयन करने से ध्यान रखें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, प्रमाणित बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं,
0: जैसा कि मैं,
1: और ई की पहचान कैसे हम करें?
0: तो आप अगर कुछ बीजों का चयन करते हैं तो बीजों का साइज एक जैसे सारे बीज दिखें,
1: अच्छा छोटे बड़े ना हो,
0: छोटे बड़े
1: समान रूप से,
0: समान रूप में हो, और उनके जो कलर है उनका जो
1: रंग है
0: उसमें कोई डिफरेंस ना हो, कोई अलग अलग ना दिखे, और देखें कि कहीं फफूंद या फिर कहीं कुछ ना हो उसमें, ये जरूर ध्यान रखें।
1: बिल्कुल आकार और रंग में समान,
0: आकार और रंग समान होना चाहिए, और उनका जो ऊपर की शाइन होती है, चमक होती है, वो जरूर देखनी चाहिए। कि आप रबी के बाद जरूर एक फसल लें,
1: और सब्जी की जरूर फसल,
0: सब्जी की फसल जरूर लगाएं, और खरीफ की तैयारी तब से शुरू कर दें। मान लो हमें जून 15 के बाद से बुवाई करनी है, तो आप मई से सुनिश्चित कर लें, आसपास देखें, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में देखें, हमारी कुछ ऐसी इफ्को क्रिप्को की भी शॉप्स हैं जिनकी फ्रेंचाइजी लोग लेते हैं, तो वो इफ्को क्रिप्को में एनएससी सेंटर्स के लोग मिलके वहां पे बीज उपलब्धता कराते हैं। तो आप वहां से बीज उपलब्धता के पास जब आप जाएंगे तो आप पूछेंगे कि ये यहाँ पे सरकारी बीज है या फिर हमको कौन सी कंपनी का अच्छा बीज मिल रहा है, हमको कहाँ से ये लिया गया है। तो जितने भी हमारे सरकारी स्थानों से बीज उपलब्ध किए जाते हैं वो हमेशा गुणवत्तापूर्ण और अच्छे बीज होते हैं। आप विश्वविद्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं इस चीज के लिए।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, बीज उपचार काय जरूरी है और इसे कौन कौन से हमारे किसान भाइयों को लाभ होता है?
0: किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया कि गुणवत्तापूर्ण बीज में आपको क्या चाहिए होता है, अंकुरण ज्यादा हो, बीज प्रतिरोधक क्षमता हो, कीट प्रतिरोधक क्षमता हो, और ज्यादा पैदावार हो। तो ये जो हम, अगर हमको ये एक बीज में नहीं मिलता है तो हम इसको ऊपर से देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, तो सर्वप्रथम हम ऐसे केमिकल्स मिलाते हैं जिससे अंकुरण क्षमता बढ़ जाए। दूसरे हम जैसे कार्बेंडाजिम नाम का एक फफूंदी नाशक है, कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से दिया जाता है। जब हम वो देते हैं तो क्या पाते हैं कि फफूंद नाशक जितनी भी आपकी बीमारियां हैं वो नहीं आएंगी। कीटनाशक थीरम, कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, ये सारी दवाइयों से क्या होता है कि प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है। तो यही सारी चीजों की वजह से हमको बीज उपचार किसान भाइयों करना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छी चीज आई है, मैं

0: आना चाहूंगी कि वो सरकारी हो या प्राइवेट, आजकल सी ट्रीटमेंट करके सब कुछ सबको ही दे रहा है, तो आप जरूर, आप जब बीज खरीदे तो एक बार पूछ जरूर लें कि आपने ये बीज उपचारित बीज है या नहीं है, और नहीं है तो आप जरूर करें, कार्बेंडिज्म का नाम लिख दें, लिख लें, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज की दर से आप हर किसी भी फसल में उपयोग कर सकते हैं, दलहनी, तिलहनी, सीरियल, कोई भी।
1: बिल्कुल, तो बीज को उपचारित करके जरूर
0: बिल्कुल लगाए।
1: बुवाई के लाने खेत की तैयारी और उचित कृषि यंत्रण को का महत्व है?
0: तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि भूमि की तैयारी, तो मुझे लगता है कि मैं वैज्ञानिक हूं 8 साल से, और अगर किसान भाइयों की बात करते हैं तो वो 80 साल से या फिर उनके पुश्ते भी भूमि की तैयारी और फसलें करती आई हैं, तो मुझसे ज्यादा आप करते आए हैं, और लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगी कि भूमि की तैयारी में आप एक बार कल्टीवेटर चलाएं, एक बार हैरो चलाएं, और पाटा जरूर लगाएं किसान भाइयों। जब भी आप खेती की तैयारी करते हैं, कभी भी आपको उसको खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम जैसे जानते हैं, जैसा कि जानते हैं कि शुष्क प्रदेश है हमारा बुंदेलखंड, शुष्क प्रदेश है, तो आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा नमी को सुरक्षित करना है। तो जब भी आप भूमि की तैयारी करें तो मिट्टी पलटने वाले हल से, कल्टीवेटर से करने के बाद उसमें पाटा जरूर लगाएं ताकि नमी आपकी हो सके। दूसरी बात देखते जी, आपने बहुत अच्छा मुझसे क्वेश्चन पूछा कि खेत की तैयारी और
1: कृषि यंत्र।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैंने बहुत सारे किसान भाइयों को देखा कि वो छिड़काव विधि का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनको लगता है आसानी है, इसलिए करते हैं कि सीड ड्रिल नहीं है, इसीलिए करते हैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल नहीं है, और उनको लगता है कि आसान बात होती है। तो किसान भाइयों, हम क्यों खेती कर रहे हैं? हम कमाने के लिए खेती कर रहे हैं। अगर हम कुछ कमाना चाहते हैं तो आपको मन में ये बिठाना होगा कि लागत भी लगानी जरूरी है। किसान भाइयों, 1500 लगाएंगे 15000 का मुनाफा होगा, ये मैं आपको बता रही हूं। तो आपको यंत्रों का बहुत महत्व है, जैसा कि आप कल्टीवेटर हैरो खुद नहीं है तो किराए से लेकर लगाते हैं, वैसे ही यंत्र में सीड ड्रिल का बहुत महत्व है। बहुत सारे लोग छिड़काव विधि करते हैं, तो छिड़काव
1: हमारे किसान भाइयों को जो भी बता दो कि सीड ड्रिल से अगर हम बुवाई कर रहे थे तो उसे कौन से फायदे हैं?
0: तो किसान भाइयों, सीड ड्रिल से अगर हम कोई भी फसल की बात, तो कभी भी छिड़काव विधि किसान भाइयों नहीं करना चाहिए। और हमारा जो भारत देश है बदल रहा है किसान भाइयों, अब बड़े बड़े यंत्रों का उपयोग कर हम बहुत अच्छी अच्छी तकनीकों को अपना रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम ये यंत्रों को की भी सही तरीके से उपयोग करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, छोटे और सीमांत किसान कम लागत में कौन कौन से साधनों को उपयोग कर सकते हैं?
0: तो किसान भाइयों, कल्टीवेटर, हैरो और मतलब मिट्टी पलटने वाला हल और कल्टीवेटर और पाटा, ये आपको अगर आपके पास नहीं है तो छोटे किसान भाई भी इसको किराए से लेकर और लगा सकते हैं। 1500 या 2000 प्रति घंटा मिलता है किराए पे, तो ये आप जरूर लगाएं। अगर आपको मैनुअल लेते हैं तो वो 1100 तक का आ जाता है, अगर आप ऑपरेटेड लेते हैं जो बैटरी वाला होता है वो 2000 तक आता है, तो वो आप जरूर खरीदे, ताकि आप अपना जो स्प्रे है, वो हर्बिसाइड का स्प्रे है, पेस्टिसाइड का स्प्रे है, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे है, तो वो स्प्रेयर से जरूर करें। और हर कोई हार्वेस्टर थ्रेशर नहीं रखता है, तो उसको आप क्या करें, उसको जरूर उपयोग करें, जो भी आप प्रति घंटा के हिसाब से करते हैं।
1: बिल्कुल, तो किसान भैया देखो, अच्छे उत्पादन के लाने अच्छे संसाधन को प्रयोग करें।
0: बिल्कुल किसान भाइयों, 10 लगाएंगे तभी 50 कमा पाएंगे। खेती भी एक ऐसा धंधा है जिसमें हम बता सकते हैं कि आप वैज्ञानिक तरीके से करिए, हम जैसे बता रहे हैं वो करिए, और आपको मुनाफा अधिक से अधिक होगा, लेकिन उसके लिए लागत थोड़ी आपको लगानी पड़ेगी। तो खरीफ में किसान भाइयों, मूंगफली लगाएं, बहुत फायदा होगा। और ऐसे जैसे खरीफ में आप मूंगफली चुन सकते हैं, तिल चुन सकते हैं, बहुत फायदा। 10000
1: किसान भाई अपनी आय इस तरह से बढ़ा भी सकते हैं, दुगना बढ़ा सकते हैं।
0: मैम, मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी किसान भाइयों को, कि जैसे आपके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, तो आप 1 हेक्टेयर लैंड को क्या करें, टुकड़ों में बांट लें।
1: बिल्कुल,
0: एक एकड़ आधा एकड़ बांट लें, एक एकड़ में तिलहनी फसल कर लें, एक एकड़ में अगर धान करना है तो कर लें, आधे एकड़ में आप सब्जियां कर लें। ऐसे करके जब आप बांट के चलेंगे तो क्या देखेंगे कि आपकी जो मृदा है उनमें भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, क्योंकि आप तिलहनी लेंगे, दलहनी लेंगे। तो आप ऐसे अपने लैंड को फ्रेगमेंट करके और अपने फसलों का चयन करें।
1: तिल है तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा आप थोड़ा कुछ फसल लगाएं।
0: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, तिल की खेती क्यों महत्वपूर्ण है?
0: हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि मैंने बताया, तिल की फसल सबसे पहले हमारे किसान भाई आय के लिए कर रहे हैं ये सब
1: जी।
0: 10,000 रुपए प्रति क्विंटल, 9826 अभी इसका एमएसपी है।

0: तो और ज्यादातर आपको 11,000 में देखने को मिलता है कि किसान भाई बेच सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बहुत महंगा उत्पादन
0: बिल्कुल
1: सजाता
0: बिल्कुल
1: है,
0: 11,000 प्रति क्विंटल
1: जी
0: कोई नहीं देता। 11,000 प्रति क्विंटल की आप एक क्विंटल से आप कमा सकते हो 11,000 रुपए।
1: बिल्कुल,
0: और जो अच्छे चयनित बीज का उपयोग करेंगे, जो मैं आपको अगर बताना चाहूँ मैं
1: बताऊंगी, तो और अच्छा
0: तो आप 6 क्विंटल तक मतलब आप 66,000 तक का आप तिल बेच सकते हैं और लागत सिर्फ आपको 14-15 हजार लगानी होगी।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, सरकारी योजनाओं का कृषि विभाग से किसानों को बीज और कृषि साधनों के संबंध में सहायता मिल सकता है?
0: बिल्कुल मिल सकती है मैम। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से हूँ
1: जी।
0: तो हमारे यहाँ बहुत सारी किसान भाइयों परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे कि हम मूंगफली का बीज देते हैं। हम ऐसे किसानों को चयनित करते हैं जो हम बताते हैं वो वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं और अच्छी आय प्राप्त करते हैं।

0: जैसे कि हम मूंगफली का बीज देते हैं, हम ऐसे किसानों को चयनित करते हैं जो हम बताते हैं वो वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं और अच्छी आय प्राप्त करते हैं, जिसमें हम उनको बीज भी देते हैं और कुछ खाद देते हैं। जैसे बहुत सारे जो किसान भाई हैं, तिलहनी फसलों में सल्फर का उपयोग करना चाहिए उर्वरक का, बट वो नहीं करते हैं। सल्फर का उर्वरक हम देते हैं, बीज अच्छा हम देते हैं उनको, और जो नहीं करते हैं पेस्टिसाइड हर्बिसाइड दवाएं सारी हम देते हैं, खरपतवार नाशी हम देते हैं। तो ऐसे करने के लिए आप हमारे विश्वविद्यालय जरूर संपर्क करेंगे। जैसे कि जून 15 से आपको खरीफ फसलें मिलने लगती हैं, तो कम से कम आप हमसे अप्रैल में आके मिलें। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में अप्रैल में आप खरीफ के लिए हमसे आके जरूर मिलें, हम आपका जरूर कांटेक्ट नंबर लेंगे संपर्क। और अगर रबी की बात करें तो आप सितंबर में आके मिलें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, चला चला था हमारे किसान भाई, इनसे आप का कह बचाओ
0: तो? तो किसान भाइयों, मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी बातें जब तक आप अपनी जमीन तक नहीं ले जा पाएंगे तब तक आप आय में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको आय में वृद्धि करनी है तो लागत लगानी पड़ेगी, आपको 10 लगाना पड़ेगा तभी आप 50 कमा पाएंगे। दूसरी बात कि गुणवत्तापूर्ण बीज का सबसे ज्यादा महत्व है, आप गुणवत्तापूर्ण बीज लगाएंगे तभी जाके आपको मुनाफा होगा। तीसरा कि आप बीजोपचार जरूर करें। चौथा कि आप बीज दर ज्यादा ना लगाएं, बीज उतना ही लगाएं जितना हम बता रहे हैं। और इसके बाद महत्वपूर्ण है कि पोषक तत्व कैसे, कब, कितना और क्यों करें। तो आप जो फर्टिलाइजर देते हैं उसकी जो नाइट्रोजन है, आप उसको पूरा का पूरा खेत में पहली बार में ना डालें, दो बार में डालें। एक तो पहले दिन जब बुवाई के समय डालें आधी बोरी, और आधी बोरी डालें आप 40 दिन बाद। और फॉस्फोरस और पोटाश, पोटाश बुंदेलखंड में किसान भाई यूज नहीं कर रहे हैं, आप कृपया पोटाश डालें। इससे क्या होता है ना, सूखे में भी आपकी पैदावार अच्छी होगी और जो आपके जो ज्यादा कीट लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे। और खरपतवार नाशी का प्रयोग जरूर करें। और अंत में जब आप उसकी कटाई करते हैं तो कटाई करके बंडल बांध के उनको खेतों पर सुखा के और फिर मड़ाई करें। और एक और बात, जो गोबर से लिपे हुए स्थान होते हैं वहां पे मड़ाई ना करें, आप टाइल्स वाले जो स्थान होते हैं वहां पे मड़ाई करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अपन ने देखो कितनी गुमदार जानकारी दी। और किसान भैया, अच्छी फसल की नींव, अच्छे बीज और सही तकनीक से रखी जाऊत है। सो किसान भैया, बुवाई से पहले पूरी तैयारी करें और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार खेती अपनाएं। डॉक्टर अर्तिका जी, अपन हमारे स्टूडियो में आई और इतनी गुमदार जानकारी दें हमारे किसान भैया को, ईक लाने अपन को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
2: तो देखो किसान भैया बहन, अब कितने उमदास अपन ने जो बतखा सुनो, बुवाई की पहली सीढ़ी, बीज की उपलब्धता और शोधन का सही तरीका, ये विषय पर शस्क वैज्ञानिक डॉक्टर अर्तिका सिंह ने अपन को जानकारी दी। यहीं भैया देखो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से, और इनसे बतखा कर रही दीप्ति सक्सेना बहन। तो देखो भैया, और आजकल अपन देखे खेत में काम करते समय अपन को व्यक्तिगत सावधानियां सुई बरतने, कैसे कि अपन जब भी खेत में जो भी काम करें तो हमें सावधानी का बरतने की। एक तो देखो सबसे पहले कि अगर देख रहे हैं कि कोनो प्रकार को अगर की जीव जंतु ना हो, ऐसे अपन बिल्कुल सावधानी। और जब भी अपन खेत में अगर पानी भरो हो तो देखो अगर छेद हो कहूँ तो अपन जाने के हाथ पाँव तो लगा चलाने, उतने दूरी रहने उन सब चीजें से। और देख लें कि बादल अगर जैसी चार है और बादल गरज रहे तो अपन कोनो पेड़ के नीचे अपने खेत पे नहीं रोकने हैं और अपन सीधे अपने घरे जा सकते हैं। ये बात को भी हमारे किसान भैया बहन बिल्कुल ध्यान रखने हैं। काय भैया देखो, घड़ी अपन को आगे बोल भी ज्यादा नहीं दे रही, तो काय ने अपने कार्यक्रम को पतो सो नोट कर लो, कार्यक्रम का पतो है कार्यक्रम चौपाल द्वारा के निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड है 284128। संगे संगे विपिन भैया खान दुआ गया, नमस्कार।

लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या 6:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। संध्या 7:19 पर प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे जिन्हें हम अपने आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। बुंदेली लोक संगीत का कार्यक्रम खुशबू माटी की लेकर हम हाजिर होंगे संध्या 7:32 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे मुंबई से अनुप्रसारित आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना प्रिय कार्यक्रम चौपाल FM 103 पर। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है।

0: रात्रि 8:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शीर्षक गीत।
1: श्रोताओ, रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत। समाचार संध्या हर रोज की तरह रात्रि 8:45 पर और News@9 आप सुन सकेंगे रात्रि 9 बजे, जिन्हें हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9:15 पर केंद्र प्रचार के साथ मुंबई से अनुप्रसारित वेद भारती के कार्यक्रम आपको सुनवाए जाएंगे।

राती 10 बजे आप सुन सकेंगे फिल्मी नगमों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे रात्रि 10:30 पर।

हिंदी में समाचार रात 11 बजे और अंग्रेजी में समाचार रात 11:05 पर प्रसारित किए जाएंगे, जिन्हें हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। श्रोताओं, एक बार फिर सुन लीजिए, आज हम रात्रि 8:15 पर फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत लेकर हाजिर होंगे। कृपया सुनना ना भूलें।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी नगमों का कार्यक्रम, नए पुराने गीत सुहाने।

श्रोताओ, ये था कार्यक्रम का पहला नगमा के और वसुंधरा दास की आवाज में। जावेद अख्तर की बोल थी, संगीत दिया था अनु मलिक ने, फिल्म थी मैं हूं ना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

जिसे हमने लिया है नमक हलाल फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, शब्द रचना अनजान की है और संगीत से समारा है बप्पी लहरी ने।

नमक हलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में। श्रोताओं, नए पुराने गीत सुहाने, ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है FM 103 पर आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। लीजिए समाप्त फरमाइए प्रोग्राम का अगला नगमा।

0: ये थी लता मंगेशकर, फिल्म थी अनाड़ी। शैलेंद्र के बोल थे और इस गीत को संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: भैया कछु अनमने दिखा रहे, का बात है
2: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
1: है अपन को भैया पता नहीं है, आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
2: हेलो किसान फोन इन झोंका है भैया?
1: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उसको समाधान करवे के लाने बैठक है विशेषज्ञ भैया।
2: कैसे पाए समस्या को समाधान?
1: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेकर 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
2: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
1: फोन नंबर है 0501023200068।
2: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हो हमारे किसान भैया परेशान।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे साहिद मालिया की आवाज में मौसम फिल्म का गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं पेंटर बाबू फिल्म का गीत। स्वर लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का है, मनोज कुमार ने गीत लिखा है और इस गीत की धुन तैयार की है उत्तम जगदीश ने। तो लीजिए सुनिए पेंटर बाबू फिल्म का ये नगमा।

पेंटर बाबू फिल्म के गीत के बाद अब आपको सुनवाते हैं परख फिल्म का गीत। शैलेंद्र के बोल हैं, संगीत दिया है सलिल चौधरी ने और स्वर दिया है लता मंगेशकर ने। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे परख फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की थी आवाज, शैलेंद के बोल थे और सलिल चौधरी ने दिया था संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने मंजिल फिल्म से लिया है। योगेश के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में योगेश की शब्द रचना। आरडी बर्मन ने संगीत दिया था और फिल्म थी मंजिल। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, जिसे हमने लिया है आजाद फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के गीत को संगीत से संवारा है सी रामचंद्र ने।

आजाद फिल्म के गीत के बाद अब आपको सुनवाते हैं एक बार फिर लता मंगेशकर की आवाज। राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं और संगीत दिया है मदन मोहन ने। फिल्म है अनपढ़।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सहाने अब यहीं समाप्त होता है। एफएम 103 पर यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचार अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: प्रोजेक्ट है, बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में।

0: जयपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है, ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर हमीरपुर महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे, बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रूपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहां के विकास को और गति देगा।
2: दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
1: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं, जिससे भावी पीढ़ी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20 फीसदी था, घट करके आज 3-4 फीसदी तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए एसआईटी ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने एसआईटी को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को एसआईटी के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीवीजी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
4: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। 21

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकार

0: उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सृजनशील योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनमोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, डीबीटी, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: टीईटी परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश भर में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBG रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
3: FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। निजी प्रस्तुत है बुंदेली लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम खुशबू माटी की। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं खूबचंद कुशवाहा के गाए इस पर्यावरण लोकगीत से।

श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का पहला लोकगीत। स्वर था खूबचंद कुशवाहा और साथियों का। आइए एक और पर्यावरण गीत सुनते हैं। आवाज है पन्नालाल असर की।

0: है भैया कछु अनमने दिखा रहे का बात है
1: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
0: हैं अपन को भैया पतो नैया आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
1: हेलो किसान फोन इन जोका है भैया?
0: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उनको समाधान करवे के लाने बैठक है विशेषज्ञ भैया।
1: कैसे पाए समस्या को समाधान?
0: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
1: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
0: फोन नंबर है 0510-232-0068।
1: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हुए हमारे किसान भैया परेशान।

श्रोताओ, बुंदेली लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम खुशबू माटी की प्रसारित किया जा रहा है एफएम 103 पर आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामप्रसाद अहिरवार की आवाज में ये देवी गीत, और आइए अब आपको सुनवाते हैं रामनाथ अहिरवार और सुशीला देवी की आवाज में ये युगल लोक गीत।

आप सुन रहे थे रामनाथ अहिरवार और सुशीला देवी की युगल आवाजों में ये तकरार गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं निरंजन कुमार शर्मा की आवाज में ये हास्य गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे निरंजन कुमार शर्मा की आवाज में ये हास्य लोकगीत। और लीजिए, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं प्रहलाद सिंह टिप्पणियां और साथियों की आवाज में ये लोक भजन।

श्रोताओं, प्रहलाद सिंह टिप्पणिया के गाए इस लोक भजन के साथ ही बुंदेली लोक संगीत का कार्यक्रम खुशबू माटी की अब यहीं समाप्त होता है। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे मुंबई से प्रसारित आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में झलकी आपके लिए लेकर आए हैं दिवा स्वप्न, लेखक मनुभाई देसाई, निर्देशक सत्येंद्र शरत।
1: हेलो, हाँ ये 54808 है। कौन? सुषमा? हाँ हाँ, मैं उषा बोल रही हूँ। कहो, अच्छी हो ना? और तुम्हारे पति परमेश्वर? अच्छा, लंच लेकर थोड़ी देर आराम कर रहे हैं? अरे बड़े भाग्यवान हो सुषमा, यहाँ तो अभी तक अपने उनके इंतजार में बैठे सूख रहे हैं। देख लो ना, 2 बज गए हैं। अरे नहीं रे, एक दिन की बात नहीं, ये तो रोज की कहानी है। रोज ही खाने के लिए घर आते इनको 2-3 बज जाते हैं। नहीं नहीं, मैं बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो कि ये दोनों हाथों से लक्ष्मी बटोर रहे हैं, मगर मैं पूछती हूँ सुषमा, इस लक्ष्मी की जरूरत किसे है? पैसे के लिए इतनी हाय हाय क्यों? मेरे लिए? तुम भी मुझे गलत समझ रही हो सुषमा, आवश्यकता से अधिक मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ ये भी मेरी तरह संतोष रखें और जितना जरूरी हो उतने ही हाथ पांव मारे। काम काम, जब देखो काम, काम के पीछे अपने आप को मिटा देने का इरादा है क्या? पता नहीं इनके मन में पैसे के लिए

0: इतनी लिप्सा क्यों जाग गई है? अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं इस पैसे को लेकर क्या करूंगी? हम्म, क्या कह रही हो तुम? अरे एक बार नहीं 50 बार कह चुके हूँ, आए दिन इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। अरे एक भी नहीं सुनते मेरी। क्या छोड़ भी, न प्यार न डांट फटकार, इन पर किसी चीज का असर नहीं होता। चिकने घड़े हैं ये। सुषमा शायद वो आ गए, किसी की आहट आई है। अच्छा शाम को फोन करूंगी।
1: अरे मैंने कहा फोन से छुट्टी मिल गई हो तो आपसे प्रार्थना की जाए कि इस नाचीज की तरफ भी ध्यान दीजिए।
0: क्या ध्यान दूं आपकी तरफ? आरती का थाल लाऊं सजाकर आपके लिए? 2:30 बज रहे हैं, अब तो मंदिर में भी भगवान के शयन का समय हो गया है।
1: बस इतने ही व्यंग्यबाण हैं आपके पास? कुछ और भी तो जलीकटी सुनाइए। सुबह से निकले थके मांदे आदमी के दिन में घर लौटने पर क्या इससे ज्यादा स्वागत उसका नहीं किया जा सकता?
0: जरूर किया जा सकता है। हाँ आप तो इससे ज्यादा स्वागत के अधिकारी हैं।
1: तो फिर रुक नहीं, जो कुछ आपके मन में है उसे बाहर ले आइए, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए।
0: कसर तो आपने नहीं छोड़ी है कोई, एक दिन हो दो दिन हो, मगर यहाँ तो हफ्ते और महीने निकलते जा रहे हैं और आपके रूटीन में इंच भर का फर्क नहीं आ रहा है। सुबह भागते भागते नाश्ता करते हैं, दिन का खाना खाने के लिए आपको 3 बजे घर आने की फुर्सत मिलती है। खाना दिन में कई बार ठंडा होता है, कई बार गर्म होता है। मेरी एक आंख दरवाजे पर रहती है, दूसरी घड़ी पर। एक कान दरवाजे की घंटी पे लगा रहता है, दूसरा फोन पर। आप अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, और इतनी प्रतीक्षा के बाद हाथ पल्ले क्या लगती है? निराशा। आप आते हैं 2:30 बजे, कभी 3 बजे, और कभी उस समय जब लोग शाम की चाय पीकर घर घूमने के लिए बाहर निकलने की तैयारी कर रहे होते। आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ, मेरी भी तो कुछ भावनाएं हैं, मैं भी तो आपके साथ घर या बाहर थोड़ा बहुत समय बिताना चाहती हूँ।
1: तुम ठीक कहती हो उषा, मुझे तुम्हारे प्रति कुछ ज्यादा कंसिडरेट होना चाहिए, मगर तुम्हें भी तो मेरे प्रति थोड़ा बहुत कंसिडरेट होना चाहिए। तुम्हें मालूम है मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, नया कारखाना प्लान कर रहा हूँ। कदम कदम पर इतनी समस्याएं, इतनी उलझने सामने आती हैं कि सांस तक लेने की फुर्सत नहीं मिलती। कई बार तो इतनी घुटन महसूस होती है, लगता है चक्की का पार्ट गले में डाल लिया है।
0: यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तुमने ये चक्की का पार्ट गले में क्यों डाल लिया है? क्या इस नए बिजनेस के शुरू करने से पहले हम लोग भूखे मर रहे थे?
1: नहीं, लेकिन जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे थे वो कुछ जिंदगी थी। छोटा घर, सीमित आमदनी, सब सुख सुविधाओं का अभाव।
0: हाँ, अब घर बड़ा हो गया है, आमदनी बढ़ रही है। हाँ, सपना तो कम से कम इस बात का देखा ही जा रहा है। सुख सुविधाएं भी पहले की तुलना में ज्यादा हो गई हैं। मगर अब घर के स्वामी को इस बड़े घर और इन सुख सुविधाओं का उपभोग करने का अवकाश नहीं है। भाग्य का ये कितना बड़ा व्यंग है।
1: उषा ये कुछ ही दिनों की तो बात है, एक बार काम चल निकलेगा तो फिर मुझे अवकाश ही अवकाश रहेगा। फिर तो सारा समय तुम्हें और घर को ही दूंगा मैं।
0: ये दिन हफ्तों में बदल जाएंगे, हफ्ते महीनों में और महीने वर्षों में, और आपको कभी अवकाश नहीं मिल पाएगा। एक समस्या मिटेगी तो दूसरी नई समस्या आ खड़ी होगी, वो खत्म होगी तो एक बिल्कुल ही नई समस्या आपको घेर लेगी, और आपका जीवन कोल्हू के बैल की तरह एक निश्चित दायरे में गोल गोल घूमता जाएगा।
1: तुम मुझे कोल्हू का बैल कहती हो उषा? मेरी ऊपर उठने की आकांक्षाओं का मजाक उड़ाती हो।
0: आपके जीवन में कुछ करने या ऊपर उठने की महत्वाकांक्षाओं का नहीं, मैं दिवा स्वप्न देखने की आपकी आदत का मजाक उड़ाना चाहती हूँ।
1: मैं दिवा स्वप्न देखता हूँ?
0: हमारा विवाह हुए 14 वर्ष हो चुके हैं और आपने अभी तक दिवा स्वप्न देखने के अलावा कुछ नहीं किया है। यदि इस बीच में स्कूल की नौकरी ना करती होती तो शायद हम लोग भूख से मर गए होते। कर्जदार तो खैर हम हो ही गए थे।
1: तो क्या इन 14 वर्षों में मैंने कोई उद्यम, कोई कोशिश नहीं की है?
0: की है, मगर आपकी सारी कोशिशें असंभव को संभव बनाने की थी, इसीलिए आप असफल रहे। आपने कभी कोई ऐसा काम हाथ में नहीं लिया जो आपकी शक्ति और आपके साधनों की पहुंच के अंदर होता। आपने किसी छोटे काम में हाथ नहीं डाला, आपने वही प्रोजेक्ट हाथ में लिए जिनमें सैकड़ों नहीं हजारों और लाखों रुपए पाने के सपने छिपे थे, और क्योंकि उन सपनों की नींव मजबूत नहीं थी इसीलिए जल्दी ही वे सपने आकाश से नीचे आ गए। उसी निर्दय निर्मम धरती पर जहाँ गिरगांव रोड की हमारी वो अंधेरी, तंग और सीलमदार खोली थी जहां दिन में भी

0: रोज घूमते रहते थे।
1: हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति को शुरू में थोड़ी बहुत असफलता मिलती है, उससे निराश होकर वो हाथ पर हाथ रखकर थोड़ा ही बैठ जाता है।
0: मैं कहती हूँ तुम समझते क्यों नहीं, मैं तुम्हें अकर्मण्य में होकर घर में छिपे बैठने के लिए तो नहीं कहती हूँ, नहीं मैं ये कहती हूँ कि तुम सपने मत देखो।
1: हो तो फिर तुम क्या कहती हो?
0: यही कि सपने देखो मगर दिवा स्वप्न नहीं। थोड़े से काम शुरू करो, छोटा काम शुरू करो, उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए ऊपर ले जाओ और इस तरह अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करो। छोटा सा पौधा ही धीरे धीरे बड़ा होकर एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। तुम लाख कोशिश करो, तुम एक महीने में धरती पर एक बहुत बड़े वृक्ष की जड़ें नहीं जमा सकते, और तुमने आज तक ऐसा ही करने की कोशिश की है।
1: मगर अजय तो कहता है कि योजनाएं बड़ी ही होनी चाहिए। छोटी योजना तो मालगाड़ी की तरह होती है जो खिसट खिसट कर चलती है, और कभी कभी तो छोटे से फासले को तय करने में महीनों लगा देती है। बड़ी योजनाएं सफल होने पर आदमी मिनटों में मालामाल हो जाता है।
0: ओहो, आप मिनटों में मालामाल होने की भावना मन से निकाल दीजिए ना। मैं कहती हूँ क्या कीजिएगा मिनटों में मालामाल होकर, चार रोटी की जगह आप 8 रोटी खाने लगेंगे। ये जो सूट आपने पहन रखा है इसके ऊपर आप दूसरा सूट पहनने लगेंगे।
1: नहीं, लेकिन तब मैं इससे बढ़िया फ्लैट ले लूंगा, घर में सुख सुविधा ऐश्वर्य का अधिक सामान ले आऊंगा। जीवन की इस दौड़ में मैं किसी से पीछे क्यों रहूं? अजय कहता है
0: ओहो, आप अजय भाई की बातों में।
1: ओहो, एक मिनट रुको, देखता हूं कौन आया।
2: हेलो
1: अजय। अरे भाई बहुत बड़ी उम्र तुम्हारी, अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था।
2: हाँ, तभी मुझे लग रहा था कि कोई मुझे याद कर रहा है। भाभी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अरे ये क्या, मेरे इंतजार में अभी तक खाना मेज पर ही रखा है। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी भाई, आप लोग खा लेते, मैं तो घर से थोड़ा बहुत खाकर ही चला था।
1: मगर ये बात नहीं है अजय, खाना अभी तक न खा सकने का कारण वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। दरअसल हुआ ये कि घर में घुसते ही आज तुम्हारी भाभी मुझ पे बरस पड़ी।
0: अब रहने दीजिए ना अजय भाई।
2: ना ना ना ना, अजय भाई से कोई पता ना रखिए। भाभी बताइए आज आपने अनिल को किस बात पर?
1: अच्छा अच्छा, देखो मैं बताता हूँ। अजय तुम्हारी भाभी कहती हैं कि मैं दिवा स्वप्न देखता हूँ।
2: ठीक कहती हैं। मैं पूछता हूँ कौन दिवा स्वप्न नहीं देखता, और जो नहीं देखता वो क्यों नहीं देखता? ये दुनिया कायम ही दिवा स्वप्नों पर है। भाभी दिवा स्वप्न देखने वाला आदमी ही अपने दिवा स्वप्नों को साकार करता है।
0: जैसे आपके भाई साहब इन 14 वर्षों से साकार कर रहे हैं।
2: पिछली बातों को छोड़िए भाभी, जो बीत गई सो बीत गई, अब की बात कीजिए अब की। इस बार हम दोनों ने जो योजना बनाई है आप उसे सुनेंगी तो फड़क उठेंगी। क्या प्रोजेक्ट है। बस भाभी ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी के आकाश से धरती पर उतरने के लिए सीढ़ी लगा दी।
0: अजय भाई एक बात बताएंगे?
2: छोटी छोटी दो बताऊंगा, आप पूछिए तो।
0: इससे पहले आज तक आप ठीक इसी तरह के कितने प्रोजेक्ट बना चुके हैं?
2: ध्यान नहीं आता, मगर शायद 3-4 प्रोजेक्ट।
0: 3-4 नहीं, 30-40 प्रोजेक्ट आप बना चुके हैं, और उनका नतीजा क्या हुआ है? लक्ष्मी के धरती पर उतरने की जगह आप अपने पार्टनरों को, जिनके साथ आपने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, उनको आप धरती पर उतार चुके हैं।
2: इससे क्या होता है भाभी, इंसान अपनी असफलता से भी हमेशा कुछ न कुछ सीखता ही है। अब तक के अपने सारे अनुभवों का निचोड़ मैंने इस बार इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है जो मैं अनिल के साथ बना रहा हूँ। सब कुछ फाइनल हो गया है, ब्लूप्रिंट रेडी है, ड्राइंग्स तैयार है, बस थोड़े फाइनल प्रबंध और होना है, जिसके लिए अनिल और हम भाग दौड़ कर रहे हैं। वो होते ही मशीनरी फिट हो जाएगी, इस पूर्णिमा को कारखाने का उद्घाटन होगा। और भाभी आपने वो कहावत तो सुनी होगी, उतावला सो बावरा और धीरा सो गंभीरा। आप थोड़ा धीरा जाओ रखिए, बस 3-4 महीने में ही एयर कंडीशनड कार होगी, बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे और हम सब लोग वर्ल्ड टूर के लिए निकल पड़े।
0: ब्लू प्रिंट, ड्राइंग, प्लान, साइट, प्रोजेक्ट, फाइनेंस, एयर कंडीशन कार, वर्ल्ड टूर, बस कीजिए बाबा बस कीजिए, ये सब सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए।
2: भाभी
0: हाँ अजय भाई, ये सब दिवा स्वप्न है, इस टैक्सी घोड़े हैं, यथार्थ की तेज हवा में ये आकाश में उड़ जाएंगे। अपने भाई साहब को इन झूठे सपनों में मत बहलाइए, उन्हें धरती पर ही खड़े रहने दीजिए, आपकी बड़ी कृपा हो।
1: ये क्या कह रही हो तुम? अजय मेरा शुभचिंतक है, मेरे भले ही के लिए सब कर रहा है।
0: अजय भाई और शुभचिंतक, कब से 100 चूहे खाने के बाद बिलाव चूहों का शुभचिंतक बन गया? पूछिए तो जरा इनसे, आप जैसे कितने सीधे और भले दोस्तों का सर्वनाश ये अब तक कर चुके हैं, इन्होंने अब तक जिंदगी में किया क्या है? बस दोस्तों को सब्ज बाग ही दिखाए हैं, वही अब कर रहे हैं।
1: बस करो उषा, होश में तो हो तुम।
2: नहीं नहीं अनिल।

0: तो कुछ कहना है उन्हें कहने दो।
1: हाँ, आज मुझे जो कुछ कहना है मैं जरूर कहूंगी। मैं इतने दिनों से अपने पे बहुत सब्र कर रही हूँ, मगर अब बात बर्दाश्त के बाहर है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ अजय भाई, आप इन्हें एयर कंडीशन कार और वर्ल्ड टूर के दिवा स्वप्न न दिखाई। हम लोग जिस हाल में हैं, हमें उसी में रहने दीजिए। घी से चुपड़ी दो रोटी का लालच दे, हमें जो रूखी सूखी मिल रही है उसे भी हमसे मत छीनिए। आप कृपा कर यहाँ से चले जाइए और फिर आइंदा यहाँ आने और इन्हें अपनी मीठी बातों के फंदे में फंसाने की कोशिश न कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
0: जैसे आपकी इच्छा। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा अनिल। है
2: ये तुमने क्या किया उषा?
1: मैंने जो भी किया ठीक किया। भूल गए, अभी अभी अजय भाई ने क्या कहा था? उतावला सो बावरा और धीरा सो गंभीरा। हम लोग कोई छोटा काम करेंगे और धीरज के साथ उसके परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। एक महीने में लखपति बनने की मिथ्या आशा में हम अपने जीवन को नष्ट नहीं करेंगे। हम अपने जीवन को संवारेंगे, सुधारेंगे, ताकि हमारे बच्चे ईमानदार और परिश्रमी बन सकें। और हमें चाहिए भी क्या?
2: तुम ठीक कहती हो उषा, तुम ठीक कहती हो।

दिवा स्वप्न, ये की अभी आपने सुनी। लेखक मनुभाई देसाई, निर्देशक सत्येंद्र शरत। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुंबई से अनप्रसारित आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती एफएम 103 पर। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं और ये वक्त है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत का। तो आज हम आपको सुनवाते हैं शीर्षक मौसम पर आधारित गीत।

जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। नमस्कार श्रोताओ, मैं आपका दोस्त गोपाल ठाकुर एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने प्रिय कार्यक्रम शीर्षक गीत के साथ। और आज का शीर्षक है मौसम। कहते हैं ना, मौसम सिर्फ आसमान में नहीं बदलता, यह हमारी आंखों की चमक और दिलों की धड़कन में भी उतरता है।

किसी कोने में सोई हुई यादों को जगा देती है। मौसम का बदलना सिर्फ हवा और तापमान का खेल नहीं, बल्कि ये हमारी भावनाओं का आईना है। कभी रिमझिम फुहारें, कभी सर्द हवाएं, तो कभी गुनगुनाती धूप, हर मौसम अपने साथ एक गीत और अनगिनत यादें ले आता है। खो जाते हैं हम अक्सर कल की यादों में, कुछ मीठी बातों में, कुछ पुरानी मुलाकातों में।

दोस्तों, जब आसमान में बादल गिरते हैं या खिड़की पर बारिश की बूंदें दस्तक देती हैं, तो अक्सर चाय की प्याली के साथ पुरानी डायरी के पन्ने पलटने का मन करता है। पहली बारिश की सौंधी महक, वो बचपन की कागज की कश्तियां और किसी खास का खामोश इंतजार, सब इन मौसमों में जिंदा हो उठते हैं। मौसम चाहे पतझड़ का हो या सावन का, हर मौसम एक कहानी कहता है। यादें मौसम के उस थर्मामीटर की तरह होती हैं जो कभी कम नहीं होती। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी। दिल को चुरा लिया गया मौसम की इस बहार में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

श्रोताओ, इस अंतराल के बाद हम वापस आते हैं आज के कार्यक्रम शीर्षक गीत पर, और आज आप सुन रहे हैं मौसम शीर्षक पर आधारित गीत। दोस्तों, मौसम बदलते हैं, साल गुजरते हैं, लेकिन यादों का यह सिलसिला कभी नहीं थमता। ये वो मीठी धूप और ठंडी छांव है जो जीवन भर हमारे साथ चलती है। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। तो श्रोताओ, अब बारी है उस मौसम की जब यादें थोड़ी उदास हो जाती हैं, जब दूरियां खलने लगती हैं।

साथियों, बारिश का मौसम हो, आसमान में काले बादल छाए हो, तो ऐसा लगता है गोया समय रुक गया हो। मौसम और यादें एक दूसरे की पूरक हैं। याद में मौसमी होती हैं, कभी धूप की तरह गर्म, कभी बारिश की तरह भीगी हुई और कभी जाड़े की रात की तरह सर्द। यादें केवल दुख नहीं देती, वो हमें जीने का सबब भी देती हैं। यादों के मौसम में वो पुराने गीत, वो पुराने दोस्त और वो पुरानी गलियां सब जिंदा हो उठते हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलता है, मौसम भी बदल जाता है, लेकिन उनका क्या जो हमें सतरंगी ख्वाब दिखाकर बदल जाते हैं। लेकिन तुम तो ऐसे नहीं हो ना, तुम तो नहीं बदलोगे मौसम की तरह है।

कहां बदल जाए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मौसम कितना भी बदल जाए इंसानों की तरह बदलने का हुनर मौसम को भी नहीं आता। खैर जो भी हो, आइए हम तो इस भीगे भीगे मौसम का लुत्फ उठाते हैं।

और अब इस कार्यक्रम शीर्षक गीत से इजाजत दीजिए अपने दोस्त गोपाल ठाकुर को। नमस्कार।

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर

0: का, ये कानपुर से काबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया।

0: किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसुलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्याधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रूपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले

0: कलाकारों को प्रोत्साहन दिया और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और डीआर कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला डीआर कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

आइए अब आपको सुनवाते हैं बंटी और बबली फिल्म का गाना, जिसे लिखा है गुलजार ने, सुरों में पिरोया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद्ध गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं, जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

फिल्म पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

0: तो टल जाए।
1: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं और ये वक्त है आपको फिल्मी नगमे सुनवाने का, और कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला नगमा।

श्रोताओं, ये था चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा। फिल्म थी दो बदन, स्वर था आशा भोसले का, शब्दों के मोती थे शकील बदायूनी के और संगीत निर्देशक थे रबी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खां का लिखा गीत। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म थी अनीता। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत एक बार फिर लता मंगेशकर की आवाज है। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार की।

श्रोताओ, फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं एफएम 103 पर आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। लीजिए पेश है प्रोग्राम का अगला गीत।

शामिन, आप समाप्त फरमा रहे थे शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ हसरा जयपुरी का लिखा हुआ गीत मोहम्मद रफी के स्वरों में। फिल्म थी पगला कहीं का। और लीजिए, फिजा की वादियों में अब लहराने जा रहा है राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, चित्रगुप्त का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और भाभी फिल्म का गीत है।

श्रोताओ, आजाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और संगीत दिया था सी रामचंद्र ने। और यह है चितपट संगीत कार्यक्रम की आखिरी भेंट, स्वर मोहम्मद रफी का, नीरज के बोल इकबाल कुरैशी का संगीत, और फिल्म का नाम है चा चा चा।

मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज के फनकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। तो लीजिए समाप्त फरमाइए प्रोग्राम की ये पहली गजल।

शामिन आप समाज फरमा रहे थे भूपेंद्र सिंह की आवाज में कतील राजस्थानी का कलाम। और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं

श्रोताओं, ये थी मिताली सिंह, कलाम था आजाद जालंधरी का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं नजीर बनारसी का कलाम भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह की आवाज में नजीम बनारसी का कलाम, और लीजिए एक बार फिर सुनवाते हैं मिताली सिंह की आवाज चिराग हसन हसरत का कलाम।

फनकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कवरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने